हर हर नाम जपत जन तारियो, अग्न सागर गुर पार उतारियो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भए, जन्म जन्म के किल विख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे, अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल, पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूर रहो सब जाए। गुर पूरै सब भ्रम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे। जो उबरे से बंद लक खरे, जे तंदे मैं ओए लपटाए। उनते दुगड़ दिड़ी उन माए, ओह बेला का चीत न आवे। बिनस जाए ताहू लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे, काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए, मीठी कर कर बिख्या खाए। हाँ बंदा हाँ साधो बैर, हमरी भूम कौन का लै पैर। हाँ पंडित हाँ चतर सियाणा, करने हरना बुझे बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाने, क्या को कह क्या आख बखान। जित जित लावे ते तित लगना, अपना भला सब काहू मंगना। सब किस तेरा तू करने हार, अंत नाही किस पारावार। दास अपने कौ दी जैदान, कबू ना विसरे नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आनक जतन नहीं होत छुटारा। बहु से अण पे अगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभ की दरगह शोभा सेत, मन मेरे गहो हर नाम का उला। तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अग्न सीत का लास दुख, नाम जपत मन हो सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जसे आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै, दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर माना या गाना। अनक रूप देखने पतियाना, पुत्र कलतर उर ज्यो जान मेरी। ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी, बिन हर भजन देखो बिल्लाते। त्रिगतन त्रिगतन माया संगराते रहाओ। ज्यो बिगारी कैसर दी जय दाम, ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा। जो राखा खेत ऊपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़े, तिसके पाले कछु ना पड़े। जिसका राज तिसे का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिना है आप

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नान कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधो, चाखत होए रह बिस्मादो। अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कत हू जाइए, साध संगत वडभागी पाइए। आठ पहर जेहवे आराध, पार ब्रह्मो ठाकरे आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे। आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी ग्वारे

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जा मिले साहे, कहो नानक गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवां ग्वारेरी, रैन दिनस रहे करंगा, प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन, तृप्ता गावन हर कै दर्शन, हर संग्राते मंतन हरे, गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार, एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी, अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग हर जुगते, दिसे सब मैं सब ते रहते, पार ब्रह्म का होए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखाना, आगाध बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

उतना जो है। माया मगन कछु है मोह है, उधरै आप तरै संसार, राम नाम जप एकंकार। आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश, जाके माथा हो निदान, सोई पुरख जपै भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हों तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, चौपदे दुपदे एको अंकार, सतगुर प्रसाद। जो परायो सोई अपना, जो ता छोड़न तिस्यो मन रचना, कहो गुसाई मिली है के है, जो बिबर्जित तिस्यो ने है। रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावै मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ा पूठा बुनना, दुहां सरिया का खसम प्रभ सोई, जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, कल युग में मिले आए संजोग, जिचर आ गया तिचर पोगे भोग, जलै ना पाई है राम स्नेही, किरत संजोग सती उठ होई। रहाओ देखा देखी मन हट जल जाइए, प्रे संग ना पावे बहु जोन पवाइए, सील संजम प्रयाया गया मन, तिस नारी को दुख ना जमाने। कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जानिया, तन सती दरगे परवानिया। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, हाव तन मन तो पाक सच नाए, हर गुण गावे सही सुभाए। रहाओ पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना, अर्तन लाल जाका कछु ना मोल, परे पंडारा खूटा तोल। खावे खर्चे रल मिल पाई, तोट ना आवे वद दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लिया रलाए। गौड़ी महला पंजवा, डर डर मरते

अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुनि मन आसा करी दया सदगुर गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फरमाए इच पुनी पूरे।

सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत समट कलेस। चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी। अमृत रस पीवो प्रप्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा। जब जब जीवे परमानंदा। काम क्रोध लोह मद खोए, साध कै संग किल बिख सब धोए। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दीजै सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए। तिस्यो आलस क्यों बने माए, खसम बिसार आन कम लागे। कौडी बदले रतन त्याग, रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा। दास सलाम करत कत सोभा, अमृत रस खावे खान पान। जिन दिए तसै न जाने सुवान,

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन लै जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दै वसै भगवान, कहो नानक सही जन पूरे।

साधु संग करो सबको ए सदा कल्याण फिर दुख ना होए प्रेम भगत पज गुणी निधान नानक दरगह पाईए मान गौड़ी महला पंजवां जल थल महियल पूर्ण हरमीत प्रांबिन से गाए गुणनीत ऊठत सोवत हर संग पहरुआ जा कै सिमरन जमने डरुआ रहाओ चरण कमल प्रवरदय निवास सगल दुख का होया नास आसा मान तान तन एक साचे साह की मन में टेक महा गरीब जन साध्या नाथ नानक प्रव राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवां हर हर नाम मजन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहाओ हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किलबख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुट्यो बिख संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवां पौ सरण आई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर राते पै पंजन प्रभ माना बसाही डरपत डरपत जन बहुत जाही रहाओ जा कर दे बस्यो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम जन्म जरा मृत जसवास सो समरथ सिमर सास गिरास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवां बाहर राख्यो हृदय समाल घर आए गोविंद लै नाल हर हर नाम संतन कै संग मंत्र राता राम कै रंग रहाओ गुरप्रसादी सागर तरिया जन्म जन्म के किलबख सब हिरिया शोभा सुरत नाम भगवंत पूरे गुर का निर्मल मंत चरण कमल हृदय में जाप नानक पेख जी वै प्रताप गौड़ी महला पंजवां तन एहो थान गोविंद गुण गाए कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही कोट आनंद जय हर गुण गाही हर बिसरे दुख रोग कनेरे प्रभ सेवा जम लगे नानेरे सो वड़पागी निश्चल थान जह जपिया प्रभ केवल नाम जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी नानक कौ मिलिया अंतर जामी गौड़ी महला पंजवां जो प्राणी गोविंद त्यावै पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै साधु संग सिमर गोपाल बिना मैं झूठा तन माल रहाओ रूपवंत सो चतर सियाणा जिन जन मान्या प्रभ का पाणा जग मैं आया सो प्रवाण घट घट अपना स्वामी जान कहो नानक जाके पूर्ण भाग हर चरणी ता का मन लाग गौड़ी महला पंजवां हर के दास स्यों सागत नहीं संग ओह बिखई ओस राम को रंग रहाओ मन असवार जैसे तुरी सिंगारी ज्यों का पुरख पचारे नारी बैल कौ नेत्रा पाए दुहावे गऊ चर सिंह पाछे पावे गाडर ले काम तेन कर पूंजी सौदे कौतावे बिन पूंजी नानक राम नाम जपचीत सिमर स्वामी हर सामीत गौड़ी महला पंजवां सामत निर्मल कहियत धीर राम रसायन पीवत बीर हर के चरण हृदय कर ओट जन्म मरण ते होवत छोट रहाओ
सो तन निर्मल जित उपजै ना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बेकार, सबते ऊंच एहो उपकार।

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रव अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव रहाओ, शीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी। नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तान्यो मस्तक।

दास दासन की अनक पांतिस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा। आनंद सुख पेट हर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई। माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई। एका संगत एकद ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई। एक बस बिन पंच दुहेले ओ बसदा गोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई। अन क्यों पाव करे नहीं पावै बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई। पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन विद मिलै गुसाई सहज पया परम खिन मैं नठा। मिल ज्योति जो समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठ लै सतगुर मजै बतायो रहाओ। जात का देखो ताता तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो। कै पै करो अरदास बेनती जो सुनतो है रगरायो। लयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सह सुख पायो। होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर पर्दा खोल दिखायो। नाव निद नाम निधान इकठाई तो बाहर कैठ जायो। एक कनक अनक भांत साजी बहु प्रकार रचायो। कहो नानक परम गुर खोई है इव तत् तत् मिलायो। गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सुरै नारे मन गुरमर का इसवारे। रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला। इहां खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। एहो संसार बेकार सहसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पी आए हर रस अकथ कथा तिन जानी। जां को आए सोई विहा जाओ हर गुरते मने बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे। नानक दास ही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण।

ले वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुणदान सुखदाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते भ्रम पौ काढ़ किए नह केवल जबते हमें मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जे प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत पू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतत पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान ध्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है देहो दर्श हर राया सोई होवा जो तिस पाणा यवरना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जगत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला राख लेहो पिता प्र मेरे अनाथ कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कै पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक।

ओही पाठी ओही पोचा, ओही प्यारो ओही रुचा, मन ओहो सुख जातो सहज खेलो आनंद खेलो रहे फेर पय मेल। नानक गुर शब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर नाम ले हो मीता ले हो आगे बिखम पंथ पयान रहाओ। सेवत सेवत सदा सेव तेरा संग बस्त है काल, कर सेवा तू साध की हो कटिए जमजाल। होम जग तीर्थ किए बिचहु मैं बदे बेकार, नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार। शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निचल को थाओ नाहे, बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे। जैसो गुर उपदेसिया मैं तैसो कहया पुकार, नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार। राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग हान मृत, दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ। जाओ लो हाँ के सोचो चितवाओ तौ लो दुखन भरे, जाओ कृपाल गुर पूरा भेटिया तौ आनंद सहजे। जेती सियानप कर्म हों किए ते बंद परे, जाओ साधु कर मस्तक धरयो तब हम मुक्त पए। जाओ लो मेरो मेरो कर तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो तब हम सहज सोए।

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवा मांझ। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान। रहाओ जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ न आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराद, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम आगाद। पय कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप, तत्ती वाव ना लगई, सतगुर रखे आप। गुर नारायण दै गुर, गुर सच्चा सृजनहार, गुर तुठै सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा। रहाओ राम गोबिंद चपिंदिया, होवा मुख पवित्र, हर जस सुनिया जिसते, सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला, सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोबिंद मनो विसारी है, जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लगे है जीवी है, भव जल पई पार, मिल साधु संग उधार होए, मुखी उज्जल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस, संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप, दर सच्चे साबास। गौड़ी माज महला पंजवा, मीठे हर गुण गाओ जिंदू, तू मीठे हर गुण गाओ, सच्चे से तीरतियां मिलिया निथावें थाओ। रहाओ होर साध सब फिकिया, तन मन फिका होए, विण परमेसर जो करे, फिट सो जीवन सोए। अंचल गह कै साधका, तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आराधी है उदरै सब परवार। साजन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे, अवगुण सब मिटाए कै पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर, हर के चरण निदान, नानक जाचक दर तेरे, प्रभ तुदनो मंगे दान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी महला नावा। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनस भागो। रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जाना, और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता, तिन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाना, जन नानक हो खेल कठन है, किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा, साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर मन, अचरज लख्यो ना जाई। रहाओ काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै, ज्यो बादर की शाई, जन नानक जग जान्यो मिथिया, रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनिस मगन रह माया में, कहो कैसे गुण गावे। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों, एह विद्या बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग, देखता से उठतावे। भुगत मुगत का कारण स्वामी, मूड ताहे बिसरावे, जन नानक कोटन में को, भजन राम को पावे। गौड़ी महला नावा, साधो एहो मन गहयो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर, जेह सुध सब बिसराई,
रतन ज्ञान सब को फिर लीना, तासों कछ ना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तो सब बिद बने।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अब महान मोह माया फोन भजन राम चित लावो। नानक कहत मुक्त

वेद पुराण साध मग सुन करो, निमख ना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की, वृथा जन्म सिरावे। माया मोह महासंकट बानो, ता सो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभु, ता सो नेहु ना लावे। नानक मुक्ता है तुम मानो, जेकट राम समावे। गौड़ी महला नावा, साधो राम शरण बिश्रामा। वेद पुराण पढ़े को एह गुण, सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन, औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जेह नहन, सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब, त्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन, तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुगता है तुम मानो, ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा, मन रे कहां पयो तै बौरा। अहन से औद कटै नहीं जाने, पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी। इन मैं कछ तेरो रे नाहन, देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो, गोविंद गत नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन स्यो, बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। और सगल जग माया मोहया, निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा, नर अचेत पाप ते डर रे। दीन दयाल सगल पै भंजन, शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मो धर रे। पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं, पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला, गौड़ी गुआरेरी। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहा बिखमार। त्रिकुटी छूटी बिमल बजार, गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया, सहज मिलाया। निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिगठाक रहाया, उल्ट पई जीवत मर जा गया। शब्द रवै मन हर स्यों लागया, रस संग्रह बिख पर हर त्यागया।

दृष्ट भई सुख आत्म धारा, तुझ बिन कोय ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत, किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पई ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना, नह पूलो नह परम पुलाना, कथो न कथनी हुक्म पिछाना, नानक गुरमत सह समाना। गौड़ी गुआरे री महला पहला, मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान, राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन, शब्द पछाने तिन्ने पौन। जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरेरी महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहुचित विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्ध रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर

ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगै नाम बिसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए। गुरमुख दिसै सह सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत

तृष्णा यगनो शब्द बुझाए, दूजा परम सहि सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तन मैं साचो गुर

व्रत सील संतोखं रोग ना व्यापै ना जम दोखं मुक्त भय प्रभु रूप नारेखं। जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख।

काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरप होए, जैसा सेवै तैसो होए, नर नेह केवल निरपौ ना, अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे, साचै शब्द उदर निशाणे, शब्द मरै तिस निज कर वासा, आवै ना जावै चूकै आसा, गुर कै शब्द कमल परगासा, जो दिसै सो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा, नानक बिरले मिलै उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिलै सुख होई, दुख विसरै पावै सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरणै धूरी रहाओ, नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा, सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र तासिया अलख भेवा, जै जै देखो तैं तैं साचा, बिन बूझे झगड़त जग काचा, गुरसम जावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किसको देख करो अनपूजा, संत हेत प्रभ तरपवन धारे, आत्म चीनै सो तत् बिचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ता के दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की बिपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पार अफारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवै, बिन गुरे अंत ना पाए अपेवै, आप भुलाए आपे मत देवै, दुर्मत हर नाकस दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा धारी, भूलो रावण मुगदिया चेत, लुकी लंका लूटी लंका सी समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, सहस बाहो मद कीट मैं खासा, हर नाग छले नखो बिदासा, दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमन संघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दैत संघार संत निस्तारे, आपे सतगुर शब्द विचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साच भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पत खोई, राम ना जान्या करता सोई, जन को दुख पचै दुख होई, जन में जय गुर शब्द ना जान्या, क्यों सुख पावै परम पुलान्या, एक तिल भूले बहुर पछतान्या, कंस केस चांडूर ना कोई, राम ना चीन्या अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखै कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए, नानक नाम मिलै गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हंडावो, बिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहराओ

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड सिंगार कर अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, एहनस फूल बिछावै माली, बिन हर नाम सो दे दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हों मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जानिया हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्या त्या गै कवरे, पाए मिलै सच सच है सच रे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिलै मल धोई रहाओ, ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जा रै, सो उबरै गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचर्यार मीना, मिर्ग मरै सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना, काम चितै कामण हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पिर तृप्त ना कबहू होई, पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सहजम दुख रहाओ, चोवा चंदन अगर

वाद अहंकार नाहीं प्रमेला, मंदे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला।

तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावै, वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुरसबदी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाणै दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए।

सुल्तान खान बादशाह नैरना नामो पुले जमका दुख सहना मैं तर नाम ज्यो राखो रहना चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम सह मरे संचय माया दाम मैं तन दीजे हरि अमृत नाम रैयत मेहर मुकदम सिकदार है निश्चल कोय ना दिसे संसार है अफर्यो काल कूड़ सिर मारे निश्चल एक सच्चा सच सोई जिन कर साजी तने सब गोई ओ गुरमुख जापै ता पत होई काजी सेख पेख फकीरा वड्डे कहावै हम मैं तन पीरा काल ना छोड़ै बिन सतगुर की तीरा काल जाल जिहवा यार नैनी कानी काल सुने बिख बैनी बिन सबदै मूठै दिन रैनी हृदय साच वस्या हर नाए काल न जोहे सकै गुण गाए नानक गुरमुख शब्द समाए गौड़ी महला पहला बोलै साच मिथ्या नहीं राई चालै गुरमुख हुक्म रजाई रह अतीत सच्चे सरनाई सच कर बैसै काल न जो है मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह है रहाओ अपियो पियो अकथ कथ अकथ कथ रही है निज कर बैस सहज कर लही है हर रस माते ओ सुख कही है गुरमत चालो निचल नहीं डोलै गुरमत साच सहज हर बोलै पीवै अमृत तत् विरोलै सतगुर दीखिया दीख्या लीनी मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी गत मित पाई आत्म चीनी भोजन नाम निरंजन सार परमहंस सच ज्योतिया पार जय देखो तह एक ओंकार रह निरालम एका सच करनी परम पद पाया सेवा गुरचरणी मन ते मन मानिया चुकी अहम ब्रह्मणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया सासन दुखे परम चुकाया जिनकै मन वसिया सच सोई तिनकी संगत गुरमुख होई नानक साच नाम मल खोई गौड़ी महला पहला राम नाम।

सहित उपजय हर लिवलाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम नाचे तय उपावन हारा। मर जमै फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते भरम ना जाई। मूल छोड़ लागे दूजै भाई, बिखका माता बिख महे समाई। माया कर मूल जंतर परमाए, हर जियो विसरिया दूजै पाए। जिस नदर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बाहर साच वरताए। साच ना छपै जे को रखै छपाए, ज्ञानी बूजै सह सुभाए। गुरमुख सांत रहया लिवलाए, हों मैं माया शब्द जलाए। मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुर दाता शब्द सुनाए। तावत राखै ठाक रहाए, पूरे गुर ते सोजी पाए। आपे करता सिरहिट सिर जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। नानक गुरमुख बूजै कोई, गौड़ी महला तीजा। नाम अमोलक गुरमुख पावै, नामो सेवे नाम सही सुमावै। अमृत नाम रसना नित गावै, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावै। आनदन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ। हृदय सुख भया प्रगास, गुरमुख गावै सच गुणतास। दासन दास नित होवै दास, गृह कुटामै सदा उदास। जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावै सोई। त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिलै प्रभ सोई। मोह कुटम स्यों प्रीत ना होए, जा हृदय वस्या सच सोए। गुरमुख मन बेदया स्थिर होए, हुक्म पछाणे बूझै सच सोए। तू करता मैं अवर ना कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए। कृपा करै गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग मै लोए। गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसै अंदर।

मन कर हला मेरे प्रीतमा, दिन रहन हर लिव लाए, घर जाए पावै रंग महली, गुर मेले हर मेलाए। मन कर हला तू मीत मेरा, पाखंड लोभ तजाए, पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए। मन कर हला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगति मल लै जाए। मन कर हला मेरे प्यारिया, एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए। मन कर हला मेरे सजना, हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगह पहनाया हर आब लया गल

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज।

सदा सुहागण जा सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाई है। गुर शब्दे मेला ता पिरावी, लाहा नाम संसारे। नानक कामण नहा प्यारी, जा हर के गुण सारे। सा तन रंग माणे जियो, अपने नाल प्यारे। अहनस रंग राती जियो, गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बद मिलो प्यारे। सा तन सोहागण सदा रंग राती, साचै नाम प्यारे। अपने गुरमिल रही है अमृत गही है, दुबदा मारन वारे। नानक कामण हर वर पाया, सगले दुख विसारे।

राम नाम वा पराग मैं पारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे, हरे आप सवारे आपे भक्ति लाए, आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण दाता गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सतबलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिराजियो, हर नाम ते आए मन्यो दूर ना जाहे पिराजियो, घर बैठिया हर पाए घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए सहजे सत सुभाए। गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनो आप कराए, नामो बीजै नामो जमै नामो मन वसाए, नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए। हर का नाम मीठा पिराजियो, जा चाख है चित लाए, रसना हरस चाख मुइये जियो आन रस साध गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम ते आए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए। नामे उपजै नामे बिरसै नामे सच समाए, नानक नाम गुरमति पाईऐ आपे लै लवाए। एह वडाणी चाकरी पिराजियो, तन छोड़ परदेस सिधाए, दूजै किनै सुख ना पायो पिराजियो, बिख्या लोभ लुभाए बिख्या लोभ लुभाए।

फिर दोष नाही सुखै दाते हाँ विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया धारो कर आवो ना प्यारे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हाँ सिर अर्पी तस्मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु देखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलियां करे कामनु मिटे सगलिया देसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर ला लिया आ प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकरो सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहर को उपजिया दूत थाऊ गुवाया अनहत वाजे वजह घर मैं पिर संग सिज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला पंजवा मोहन तेरे उच्चे मंदर महलिया पारा मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला धर्मशालिया पार दयार ठाकरो सदा कीर्तन गावे जै साध संत एकत्र होवे तहां तुजै त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन किरपारा बिनवंत नानक दर्स प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचना नूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एका लेख ठाकर जिने सब कल धारिया तुद बचन गुर कै वस किया याद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुमारिया। मोहन तुद सत संगत त्यावै दर्श ध्याना मोहन जम नेड़ ना आवै तो जपै निदाना जमकाल तिनको लगे नाही जो एक मन त्यावहे मन बचन कर्म जे तो द्यारा दे से सबे फल पावहे मलमूत मूड़ जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगयाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूर्ण पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहे अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो तन कहया तिन जम नेड़ ना आया बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवा सलोक पतत असंख पुनीत कर पुनै पुनै बलिहार नानक राम नाम जप पावको तिन किल बिख दाहनहार शंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हरमादो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तारु चरण कमल आरा दिए जम पंथ विखड़ा अग्न सागर निमख सिमरत साधी है कल मलै दैता शुद्ध करता दिन सरैण आराधो बिनवंत नानक करो किरपा गोपाल गोविंद माधो। सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया भगत वछल पुरख पूर्ण मनिया चिंदिया पाईऐ तम अंध कूप ते उधारै नाम मन वसाईऐ सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुणयानक भक्ति गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी करना मैं समरथ स्वामी घटघड़ प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम्या पारो सरण योग
समर्थ मोहन सर्व दुख बिदारो, रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी, बिनवंत नानक करो कृपा समर्थ सब कल तुहारी। गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला, विश्वंपर देवन को एक सर्व करै प्रतपाला, प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसै, काल कंटक लोभ मोह नासै जी जा के प्रभसै। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पही पूर्ण कहला, बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी जब दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा, सुन सखिए मन उदम करेहा, मनाए लय हर कंत, मान त्याग कर भगत ठगौरी, मोह साधु मंत। सखी वस आया फिर छोट ना जाई, एह रीत भली भगवंत। नानक जरा मरण पै नरक निवार, पुनीत करै तिस जंत। सुन सखिए एह पली बिनंती, एहो मतांत पकाई है, सहज सुभाए उपाद रहत होए, गीत गोविंद गाई है। काल कलेश मिटै भ्रम नासै, मन चिन्हया फल पाई है, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आई है। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई, भ्रम मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए। खोज लहो हर संत जना संग समर्थ पुरख में लाए, नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड पागी माए। सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे, मेरा मंतन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद भली, मैं अपनड़ा पिर मिलिया। प्रम खोयो सांत सहे सुवामी, प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सोहाग ना टलिया।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंदप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोधरा गुरदेव सात सतबुद गुरदेव सात सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आदि जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा।

नानक एको रव रया, दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओवं साध सतगुर नमस्कारं, आदमद अंत निरंकारं। आपै सुनो आपै सुख आसनो, आपै सुनो तो आप ही जासनो। आपने आप आपै उपायो, आपै बाप आप ही मायो। आपै सूखमो आपै अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला।

आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओवं गुरमुखियो अकारा एक सुत परो बनहारा भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं सगल भांत कर करै उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू पांते आप निरारा नानक अंत ना पारा वारा सलोक सेई साह भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सतपुरख ते पिन ना को सो सरन पर जेह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहूं को जापत सो

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तांते उजे रुच या मनुआ तन नहीं बांछै सुरग ना आछै अत प्रे प्रीत साध रज राचै तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक शाड़ियन कतै न जाहूं जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बात अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुनत कर

माया गर्भ कुंट में उर तब करते साथ साथ सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत्युत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके निकट ना माए सलोक किरतक मामन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ आप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो सो पायो जो आप दिवायो उवा का अंतना जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक तेह सरनी परो बिनस जाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सक ते उकमाहे हाँ हाँ करते कर्म रत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तऊ एउ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे ने बुझै सो प्रभ सधु संग लेखे गणतना।

होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना अरे रे दरगह कह ना को आओ बैठे आदर सुब देऊ ओवा महली पावे तू बासा जन्म मरने होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बेकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते अहम बुद्ध माया मदमाते या

होवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया, कीट हस्त में पुरुष माने, प्रगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर ते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान, नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसनो हर हर जस भनिए, आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन नाम मै राता, जा को दया मै बेदाता, एक कै आवन फिर जो न आया, नानक हर कै दर्श सुमाया। श्लोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ, दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जा

तिसै त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसरिया पव जल तरना यैया जन्म ना आवै सो एक नाम ले मने प्रो यैया जन्म ना हारिया गुरपूरे की टेक नानक ते सुख पाया जा कह ही अर एक सलोक अंतर मंतन बस रहे ईत ऊत के मीत गुरपूरे उपदेसिया नानक जपिय नीत पौड़ी अंदन सिमरव तास कहो जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए का को मात पिता सोतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिरसत नाही पासेती अपने कर जाही साध संकर कीर्तन गाया नानक ते बहुर न आया सलोक अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कही है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी नंगा खड़शास्त्र हो ज्ञाता पूरक कुंभक रेच करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उद्यानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कश कीनो सो अनेता उवा ते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसै गोपाला सलोक कुंट चार दै दिस प्रमे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिख्यो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिख्यो लेखना मेटत को नहीं होत कही दो बारा करने हारना पुल नहारा काहू पंथ दिखा रह आपै काहू ध्यान परमत पैता पै आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिलशित रहे टूटना जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जानो नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कश नहीं ते समर्थ कै पाहे जो दे ना सो दे रहो भावै तै तै जाहे खर्च खजाना नाम तानो या भगतन की रास खिमा गरीबी अंध सहज जपत रह गुणतास खेलै बिकस अंध स्यों जा कहो होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने आराम नाम गृह माल खेद ना दुख ना डान ते जा कहो नदर करी नानक जो प्रभ पाणिया पूरी तिना परी सलोक गन मिन देखो मन माहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटै नानक नाम या रोग पौड़ी गगा गोमित गुण रबो सासा जपनीत कहां भी सासा देह का बिलम ना करो मीत नह बारक नह जोब नह बिरदी कश बंद ओ बेरा नह बूझिया जो आए पर जम फंद ज्ञानी त्यानी चतर पेख रहन नहीं ए ठाए शाड़ शाड़ सगली गई मूर्तहां लपटाए गुरप्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जा को प्रै सुहाग सलोक कोखे शास्त्र वेद सब न कहतो कोए आजुगादी हुन होवत नानके कै सोए पौड़ी कग्गा कालो मना एह बिन हर दूसर नाहे नह होवा ना जत का तो ही समाहे कूले तौ मन जवा वै सरना नाम तत् कल मैं पुनः चरना काल काल अनक पछतावै बिन हर भगत कहां थित पावै कोल महारस अमृते पिया नानक हर गुर जा कौ दिया। सलोक घन काले सब दिवस सास नह बढ़न कटन तिलसार जीवन लोरे पर मोह नानक तेउ गवार पौड़ी गंगा ग्रासै काल तेहे जो सगत प्रभ कीन
अनक जोन जन्मै मरै आत्म राम न चीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए। गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै। सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पै नानक ने छपया सलोक। चित चित वो चरणार बिंद ऊंद कवल बिग सांत प्रगट पै आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी। चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा। चार कुंट दै जस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिनसो शब्द हुआ सा संगमन निर्मल हुआ। चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेने तरा सलोक। छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए। ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए। पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दा दासन के पानी हारे। शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता। शार स्यान बौचितराई संतन की मन टिक टिकाई। शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई। सलोक जोर जुलम फूले कनो काची दे बेकार। अह बुद्ध बंधन परे नानक नाम छुटार। पौड़ी जज्जा जाने हो कछ हुआ बांध्यो जो नल नी परमसुआ। जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकर तिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसदा ज्यों फिरता। सा संग जे हो मैं मारी नानकता को मिले मुरारी। सलोक चालांगे उठ नाम जप निसबा सिरिया राध। कारा तुझे न व्यापई नानक मिटै उपाद। पौड़ी चज्जा चूर्ण मिटै तुम्हारो राम नाम स्यो कर व्यवहारो। चूरत चूरत साक्त मुआ जा कर दै होत पाओ बिया। चरै कसमल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरै काम क्रोध दृष्टाई नानक जा को कृपा गुसाई। सलोक यत्न करो तुम अनक बिद रहन ना पावो मीत। जीवत रहो हर हर भजो नानक नाम प्रीत। पवड़ी नन्या ज्ञानो दृढ़ सही बिनस जाय ए हेत। गणती गणो ना गण सको उड़स दारे केत। न्यो पेखो सो बिनसतो कास्यो करिय संग। ज्ञानो या बिद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए भ्रमते की चित भिन्न। अंध कूबते देख डो जे होवो सो प्रसन्न। न्या कह सम्राते कारण करने जोग नानक ते उसत करो न्याहू कियो संजोग। सलोक टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख पाए नानक मनो न बिसरै गुणित गोविंद राय। पौड़ी टहल

जा कौ साध कृपाल साधु संगतो बसे जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवनो बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाऊं संत सद के नानक पाप बिना से कद के। सलोक ठाक ना होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहै नाही जो सगल त्यागे कै लिपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे उवा कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वा का मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा तै जान ओवा डेरा का संजमो गुर कै सबद पिछान। ओवा डेरा या डेरा कौ सरम कर कालै जा का तसु नहीं संचालै ओवा डेरा की सोमत जान है जा को दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचर सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राय कने न कालो बंद नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहारे प्रभस बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग अहं बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देखने हाल। तेरी जाम जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हाहो आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत अणा होना तूने छुट निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाणा रण तेसी जिया आत्म जीतै कोए होमे अनस्यो लर मरे सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरे गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिले तेसु रतन वेस। अणा को जाने अपनो एक टेक आधार रहन दिन सो सिमरत रह सो प्रपुरख्या पार। हरेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए हुक्मै बुझै सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटियै चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राय फल पावै मन बांझते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज। ताता कछु न होई है जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिद कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै कामना आवई अंते ओ सरवार। थित पावो गोबिंद भजाओ संतै की सिख ले हो प्रीत करो सद एक स्यो या साचा स्नेहो। कारण करन करावनो सबदे कै हाथ जे जित लावो तित लगै नानक जंथ्या नाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबके देवन हार सा सा सिमरत रहै।

देंदे तोट ना आवई अगणत परे पंडार। दैन हार सब जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा। दोष नहीं कहूं कहू मीता, माया मोह बंद प्रभ कीता। दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते दे गुरमुख त्रापे। श्लोक धर जिया रे इक टेक तू, लाहे बिडानी आस। नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी। धद्दा तावत तौ मिटै, संत संग होए बास। तुरते कृपा करो आप, तौ होए मन प्रगास। तन साचा तेउ सच सहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा। तीरज जस सोभा तेह बनया, हर हर नाम श्रवण जे सुनया। गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई। श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, यंत्र बाहर रंग। गुरपुरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग। पौड़ी नन्ना नरक परै ते नाही, जाकै मन तन नाम बसाही। नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते। नन्ना कारना होता तां कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निद निदान हर अमृत पूरे, तै बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार। नानक सो आराधी है अंत ना पारावार। पौड़ी पप्पा परमित पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया। होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु। पर पज त्रोह मोह मिट नाई, जा कहो राखो आप गुसाई। पात साहो छत्र सिर सोउ, नानक दूसरे अवर ना को। श्लोक फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत। नानक गुरते थित पाई, फिरन मिटे नित नीत। पौड़ी फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ देहे कल युग मैं पाया। फिरया ओसर चरै न हाथा, नाम जपो तो कटिया फासा। फिर आमन जान ना होई, एक एक जपो जप सोई। करो किरपा प्रभ करने हारे, मिल रहो नानक बेचारे। श्लोक बिना सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल। सुख संपै बहु भोग रस ना।

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं त्र पवन प्रभ तारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पा ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

पौड़ी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जा कै सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार हे संतें कै सदा संग निधारा आधार हे ठाकर हौं दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोए सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा एहो श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास बिसम पर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक अखर किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे कांखी एक दर्स तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगै मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला
से सिमरै जने आप सिमराए, नानक तां कै लागो उपाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सबके सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद महे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कहो ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहि समानी। प्रभ कै सिमरन निःचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुपमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जय महापयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चल। जय मुश्किल हो वै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तर, हर को नाम कोट पाप पर हर। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंद ना परै, हर का नाम जपत निस्तर। अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आगावै। जेह मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही। अनक बिगन जाय आए संघार, हर का नाम तत्काल उधार। अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौं मैला मल कबो न धोवे, हर का नाम कोट पाप होवे।
ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध कै संग। जे मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। जे पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को ना सिंहानू,

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रत

हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पीसर थीवै। अग्न माहे होमत पुराण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्यौली कर्म करै बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौपी हो मैं मैल न जावै। हर के नाम समसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू ना बिखिया टरे। जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम रै सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ए मैं शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कड़ कड़ चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरतन

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद पयायु प्रसाक सैन, मुख अप्याओ बैठ कौ दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बुझै, बख्श लेहो तौ नानक सीजै, जे प्रसाद तारु पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संघसै, जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला, जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना, तिसै त्याग अवर संगरचना, ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे, नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे, आद्यंत जो

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जेह प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे जेह प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लोबावै जेह प्रसाद सुख से सुईजै मन आठ पहर ताका जस गावीजै जेह प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखानै जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगै मान पावै नानक पासेती कर जावै जेह प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जेह प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जेह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताक जेह प्रसाद तुझको ना पहुचै मन सास सास सिमरो प्रभ उच्चे जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे जेह प्रसाद या पूखन पहरीजै मन ते सिमरत क्यों वालस कीजै जेह प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी जेह प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी

साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रवे आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे।

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सज जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

नानक हो बैसनो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म मैं सोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूक्ष्म में जानै अस्थूल। चहु वरना कौ दे उपदेश, नानक उस पंडित कौ सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, सत्संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उतारै, पस प्रेत मुग्ध पाथर को उतारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जूत कत ना पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निगट निगट हर जान, सो दास दर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै। सगल संग आत्मयो दास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोऊ कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन नाओ। आपे करन करावन जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग। पसर्यो आप होए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत ना पारा वार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान तारै, कई कोट कब काब विचारै। कई कोट नवतन नाम ते आवै, नानक करते का अंत ना पावै। कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर। कई कोट पर दर्ब कौ हिरै, कई कोट पर दुख ना।

ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कभू होए पंडित करे बखियान, कभू मौन धारी लावै ध्यान। कभू तट तीर्थ स्नान, कभू से साधु मो ज्ञान। कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै परमिया। नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै। ज्योतिष पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए। कबहू साध संग ते हो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मान तन नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राजा मान। सो नरक पाती होवत समान, जो जाने मैं जो बनवंत। सो होवत बिष्टा का जंत, आपस कौ कर्मवंत कहावै। जन्म मरे बह जोन परमावै, तन भूम का जो करै गुमान। सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै। नानक यहां मुक्त आगे सुख पावै। धनवंता होए कर गर्भावै, तृण समान का संग न जावै। बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत। किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगै प्रमान। कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरक फिर फिरे अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगै कौ कैसे गवै। आपस कौ जो पला कहावै, तसै पलाई निकट न आवै। सर्व की रेण जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए, तब इसको सुख नाही कोए। जब है जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनक भोग बिखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, वडभागी किसै प्राप्त होए। करण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करण करावन करने हार, इसके हाथ कहां विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबहू कै संग। बूझै देखै करै बबेक, आपै एक आपै अनेक। मरै ना बिनसै आवै ना जाए, नानक सदी रहा समाए। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्थार, सब कछ उसका ओह करणै हार। उसते पिन कहो किछ होए,

जह आप रचियो पर पंच आकार त्यो गुण मैं कीनो विस्तार पाप उनते पई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो। अपने कर्तव्य जानै आप, अंतर जामी रहो ब्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बनयाई, हुक्म बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभु पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभु चीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवां सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पात होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कश होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविध करो विचार पत उदाहरण पैहरण सुख सागर निरंकार दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत राम रतन मंतन बसै तज काम क्रो लो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन ब्यापै जगत को तुरिया पावै कोए नानक संत निर्मल पहे जिनमन वसिया सोए पौड़ी। तृतीया त्रैगुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग ब्रह्म तो घणो सदा संगार मीच। हरख सोग सहसा संसार हाहों करत विहाय जिन किए तिस न जाननी चितवै अन के उपाय। आद ब्याद उपाद रस कबो न टूटै ताप पार ब्रह्म पूर्ण धनी न बूझै प्रताप। मोह परम बुढ़त कणो महा नरक मैं वास कर कृपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस। सलोक चतर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अवमान चार पदार्थ हिट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी। चतुर्थ चारे वेद सुन सो दियो तत विचार सर्व खेम कल्याण निद राम नाम जप सार। नरक निवारै दुख हरै टूटै अनक कलेस मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन परवेश। पाओ बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार दुख दर्द अपवित्रता नासै नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवाल। सलोक पंच विकार मन में बसे राचे माया संग साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग पौड़ी। पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै नह बुझिए नह कछ करत विचार स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक रचन हार न सिमरियो माना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त नारंच नानक बिरले पाई जो नारचै परपंच। सलोक खट शास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार भगत सोहै गुण गावते नानक प्रभ कै द्वार पौड़ी। खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथय अनेक उत्तम उच्च पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख। नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर स्यों भी दे भगत रचे भगवंत।

देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टां के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई ने चढ़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंध नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ, वणजारे थारे सच सेवा सच वणंजलै, गुण कथे निरारे सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मुकट न सके उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस ना होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक ओ सब सो जी पाई हर दर कियां बातां आग सुनाए, महला चौथा, हुंदे परतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लैंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगै पिछे थाओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाए मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगै कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिलै तस कुश्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठकिया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया गुर पूरा सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठ के आपे पैज रखे प्रभ सोई, पौड़ी काया कोटिया पार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस माले, नाम निदान हर बन जी है हीरे परवाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बिताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यो चाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मैं होया, नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया, कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया, ओह तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया, जैसा जैसा बीजे सो लुणै
जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी ते सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा काट संगोया।

मंत्र बताया हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे कियां वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़ महला तीजा।

गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, जो तिस पावै सो करे कराया, नानक वज

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणते कुसी है, दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे लय जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा लेन तिन्ना दरगह ले छाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निरजास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां।

नाही। तन बहुतै डिठै तपै तरम हारिया, पाई एहो तपा ना होवी बगला है, बैसाध जना विचारिया। सत पुरख की तपा निंदा करे, संसार की उस्तति विच होवै, एत दोखै तपा दईये मारिया। महापुरखा की निंदा का वेख, जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए। हर अंदरला पाप पंचा नो उगा कर वेखा लिया, धर्म राए जम कंकरा नो आख छड़िया। एस तपे नो तिथे खड़ पायो, जिथे महा महा हत्यारिया। फिर एस तपे दे मोहे कोई लगो नाही, एहो सतगुर है फिटकारिया। हर कै दर वर्तिया, सो नानक आख सुनाया, सो बुझै जो दईये सवारिया। महला चौथा, हर भगता हर आराध्या, हर की वड्याई, हर कीर्तन भगत नित गाम दे, हर नाम सुखदाई। हर भगता नो नित नावे दी वड्याई, बख्शिया नो नित चढ़ाए सवाई। हर भगता नो थिर करी बहालिया, नो अपनी पैज रखाई। निंदका पासो हर लेखा मंगसी, बहु दे सजाई। जेहा निंदक अपने जीए कमाम दे, ते हो फल पाई। अंदर कमाणा सर पर उगड़ै, पावे कोई बह धरती विच कमाई। जन नानक ते देख विकसिया, हर की वड्याई। पौड़ी महला पंजवा, भगत जना का राखा हरियाप है, क्या पापी करी है, गुमान करे।

हो भणी है, जन नानक का खसम वड्डा है, सबना दा धनी है। श्लोक महला चौथा। मनमुख मूलों भुलिया विच लभ लोभ अहंकार, झगड़ा करद्या अंदन गुदरै शब्द ना करै विचार। शुद्ध मत करतै सब हिर लई बोलन सब विकार, दितै कितै ना संतोखी है अंतर दिसना बहु अज्ञान अंधार। नानक मनमुखा नालों टुटी भली जिन माया मोह।

खारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभ कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चूंगै नित भेड़ राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतर सपारी कहो गुर गाज शिव सब को जाने।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जाओ बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बदा स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं ने हो रहाओ। साहन सत करे जी अपने, सोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन धन ग्रहो सौंप शरीर, सोई सुहागन कहे कबीर। गौड़ी कबीर जी बिखिया ब्यापे।

सहज मतवारा पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाओ। सहज कलालन जौ मिले आई आनंद माते अंदन जाई। चीनत चीत निरंजन लाया कहो कबीर तो अन पौ पाया। गौड़ी कबीर जी मन का स्वभाव मने व्यापी मने मार कवन से थापी। कवन सो मोन जो मन मारे मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई मन मारे बिन भगत ना होई। कहो कबीर जो जाने पे ओ मन मधुसूदन त्रिपवन दे। गौड़ी कबीर जी ओए।

सूर्य चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया, गौड़ी कबीर जी दे मुहा।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कै चाबक माराओं। कहत कबीर भले असवारा, बेदक तेवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जिह मुख पांचो अमृत खाए, तिह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसमता राखै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया सुमाए रहाओ। काको जरे कहे होए हान, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, ना मैं जोगते

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन कौ रव रहे कबीरा, गौड़ी गुआरे री। अहनिस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पय लिव लागे रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे, जो हर हरे सो होहे नायाना, कह कबीर राम नाम पशाना। गौड़ी पी सोरठ पी, अरे जिन लज लाज तोय नाही, हर तज कतकाहू के जाही रहाओ। जा को ठाकर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात ना सोही, सो साहेब रहया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर। कवला चरण सरण है जाके, कहो जन का नाही करता के, सब को कह जास की बाता, सो सम्रत निजपत है दाता। कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय वरना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग

कह तेरा जन भिन्ना, कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर जस सुने ना हर गुण गावै, बात नहीं असमान गिरावै। ऐसे लोगन स्यो क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत बाहज, तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदै जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चालै, आप गए और नहूं कहलै। छाड़ कु चर्चा यान न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहूं खोवै, आग लगाए मंदिर में सोवै। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर ना मा

कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी, साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए, गुरशब्द विचारे, किरत की बांधी सफिर है, देखो बिचारी, एसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी, पई निराशी उठ चली।

एक है शब्दी, एक है सिद्धपाई, हर बिन परम पुलाने अंधा, जां पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बहु फंदा रहाओ, जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बढ़म ही, जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै, इन बिद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है, कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है, हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एको अंकार, सतगुर प्रसाद, जह कछ आहा तहां किश नाही, पाई तत्तै नाही, इड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगन कत जाही, तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई, ए संसा मोको अंदन व्यापै, मोको को ना कह समझाई रहाओ, जह बरपांड पिंड तै नाही, रचनहार तै नाही, जोड़ नहारो सदा अतीता, एक ही है किस्माही, जोड़ी जुड़ै न तोड़ी टूटै, जब लग हुए बिनासी, काको ठाकर काको सेवक, को काहू कह जासी, कहो कबीर लिव लाग रही है, जहां बसे दिन राती, ओआ का मरम ओही पर जाने, ओ तो सदा अबनासी, गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा, परमित बाहर खिंथा, सुन गुफा मैं आसन बैसन, कल्प बिबरजित पंथा, मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मर्तना सोग बियोगी रहाओ, खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म धर्म करते बहु संजमो अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल।

तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी हृदय नहि बिचार्यो रे उन्मत मान हिर्यो मन माही गुर का शब्द ना धार्यो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेर्यो मद रस लैत बेकार्यो रे। कर्म भाग संतन संगा ने कष्ट लो उधार्यो रे। तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हार्यो रे। कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तार्यो रे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे। चलत रच्यो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवा रे। अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे। निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे। गयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे। लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे। नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गयो मन बौरा रे। माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंब का मन बौरा रे। त्यो पसरियो उपासार नामन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे। पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे। छूटन हर की सेव गौड़ी अग्न ना दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर ना आवे। राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे। हमरा तन माधव गोबिंद तरणी धार एह सार तन कही है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ। इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा। जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा। कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती हम कर एक मुरारी। गौड़ी ज्यों कपके कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो। साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो रहाओ। ज्यो उद्यान कुसुम पर फुलत कने ना कराओ लयो। तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो। या तन जोबने अरसुत दारा पेखन कहो जो दयो। तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिनको मंदर चौदे ठाठ ठयो। कह कबीर पै सागर तरन कहो मैं सदगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी। मैं नाही कश आहे ना मोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी खिर मैं बिनस जाए हंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। जात पावै ता हुक्म नावै इस बेड़े को पार लंगावै। गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर पज सारिंग पानी उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नामी जोन छाड़ जो जग में आयो लागत पवन खसम बिसरायो। जियरा हर के गुना गाओ रहाओ। गर्भ जोन में उर्द तप करता तव जठर अग्न में रहता। लक्ष चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो।
ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪਜ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਆਪਤ ਦਿਸੈ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਸੁਰਗ ਵਾਸਨਾ ਬਾਂਛੀਐ, ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੈ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਰਹਾਓ। ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਬ ਲਗ ਜੁਗਤ ਨਾ।

कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार, सेवक सो सेवा भले जे कट बसे मुरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तै सोयो संसार। राम रस पिया रे जेह रस बिसर गए रस और रहाओ, और मुए क्या रोई है जो आपा थिर ना रहाए। जो उपजै सो बिनस है दुख कर रोवै बलाए। जह की उपजी तह रची पीवत मर्दन लाग, कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग। राग गौड़ी पंथ निहारै कामनी, लोचन परी ले सासा। उर ना पीजै पग ना खिसै हर दर्शन की आसा। उडहो ना कागा कारे बेग मिली जाए अपने राम प्यारे रहाओ। कह कबीर जीवन पद कारणो हर की पद करी जय, एक आधार नाम नारायणो रसना राम रवि जय। राग गौड़ी ग्यारहवीं आस पास कंत तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊ रे ओवा का स्वरूप देख मोही गुआरनो। मोको छोड़ ना आओ ना जाऊ रे, तोहे चरण मन लागो सारंग तार। सो मिले जो बड भागो रहाओ, बिंद्रा बान मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे। जा का ठाकर तुही सारंग तार मोहे कबीरा नाऊ रे। गौड़ी बारहवीं गौड़ी पूर्वी बारहवीं, विपल बस्त्र केते है पहरे क्या बन मध्य बासा। कहां पया नर देव

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एह जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारवी मन रे छड़ो भरम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन मुखर अंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ाओ सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम करका जी आए पावै मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं प्रमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जाको रे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापो रे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सदपाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। पुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहोरे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसै कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर मै रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्तन उप ना पाई। कहत कबीर नवे कर मूसे, दसवें तत् समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुन गावे, तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल मैं ध्याना ना। बिखे रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्या जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहया बोल तै मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है ना कोई। अल्लाह लहो तव तो क्या कहो, कहो ता को पुकार, बटक बीज में रव रहे हो जा को तीन लोक विस्तार। अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे हो, पायो अपंग छेद। तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कशवक पढ़िए ज्ञान। ओवंकार आद मैं जाना, लिखियर मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ न दे जस्तावा, खसम जान खिमा कर रहे, ता हुए न खियाओ अखै पदल है। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कते ना जाई, अगे गह गै गगन रहाई। कग्गा काट काट निमसे सोई, काट फूटे काट कवे ना होई। ताँ काट माहे काट जाओ पावा, सो कट शाड अव कट कत्तावा। गंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एहे। चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी। चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो शाड़ के ना आसा। रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा। जज्जा जाओ

मनमाना है तो सही लखे जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग ता कारण व्यापे बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोग कौ व्यवहार ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बुद होई कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिति कबीर जी की। सलोक पंद्रह थिति सात वार कह कबीर उरवार ना पार। साधक सिद्ध लख जो पे ओ आपे करता आपे दे। थिति अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोविंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचार घट में खेल अकट अपार। काल कल्पना कदे ना खाए आद पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म रमै सब संग। ना उबड़े न करता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावै। साध संगत उपजै विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास।

पंच है पंच तत्व विस्तार, कनक कामनी जुग व्यवहार, प्रेम सुधा रस पीवै कोए, जरा मरण दुख फेर ना होए, छट खट चक्र शहु दिसताए, बिन पर चै नहीं थिरा रहाए, दुबदा मेट खे मांगै रहो, कर्म तर्म की सूल ना सहो, सातै समकर बाचा जान, सातै सतकर बाचा जान, आत्म राम लिहो प्रवान, छूटै संसा मिट जाहे दुख, सुन सरोवर पावो सुख, अष्टमी अष्ट तात की काया, ता मैं कुल महान निद्राया, गुरगम ज्ञान बतावै भेद, उल्टा रह अपंग अछेद, नौमी

दसवीं दैदस होए आनंद छूटै परम मिलै गोबिंद ज्योत स्वरूपी तात्यानूप अमल ना मलन शाह नहीं धूप। एकादशी एक दिस्तावै तो जोनी संकट बहुर न आवै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावो पाया नीरा। बारस बारह उगवै सूर अहनिस बाजे अनहद तूर देख्या तिहू लोक का पियो अचरज पया जीव ते सीओ। तेरस तेरा अगंब खान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम में बसै मुरार सासन तो कातरो ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुन्यो पूरा चंद आकाश पसरे कला सहज प्रगास आदि अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में रमै कबीर। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ। आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मह वाए। सोमवार सस्य अमृत चरै चाखत बेख सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मनमत वारो पी मनहार। मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिस है राए। बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का बास। गुरमिल दो एक समतर उर्द पंक लय सुदा करै बृहस्पत बिख्या दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वह नाहे। सुकृत सहार सो एह व्रत चढ़ अनदन आप स्यों लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै। थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वट्टी कट मैं जोए बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास। जब लग कट मैं दूजी आन तौ तो लो महल न लाबे जान। रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग।

राम कहत जन का स्ना तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भये, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा सह को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तसवीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल।

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, प्रबंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार।

सोई सोई सदा सा साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष पावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पत साहो साहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला चौथा सो पुरख निरंजनो हर पुरख निरंजनो हर अगमा अगमया पारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घड़कड़ अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख सुवाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिने अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवै जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पै जन हर त्याया जियो तिन टूटी जमकी फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जियो तिन का पौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तानो जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी।

अनेक पड़े बो सिमर्थ शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी। जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे वड्यावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निचर करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी। तू आपे करै सो होई तुद आपे सिरहिट सब यो पाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जान होई एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पहला चौपदे कर दूजा। सुन वड्डा आखै सब कोई केवड़ वड्डा डीठा होई। कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता केवड़ जीरा रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई कह न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद बिन सिद्धि किने ना पाईया कर्म मिलै नाही ठाकराईया। आखण वाला क्या बेचारा सिफती परे तेरे भंडारा। जिस तू दे तिसै क्या चारा।

तू सर्वे पूर रहया लिवलाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड्डा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया, रत्न उपाए तरे।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित न आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

हर वार जिन पाया धन नारी हर सिउ राती शब्द विचारी आप तरै संगत कुल तारै सतगुर सेव तत् विचारै हमरी जात पत सच नाओ कर्म धर्म संजम सत भाओ नानक बख्शे।

एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठावर ना पावे, ऐसे कर्महीन हर नाम ना त्यावे। गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत भौजल, गुर शब्दी हर पार लंघाई रहाओ। जिन को आप

बुरा पला कहो किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठसठ मजन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे। आसा महला पहला, निम्न उपाय।

प्रभ दूर नाहीं प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका कोई भीखक भीख्या खाए कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान टाहो सारे तेरे ध्यान तुते वड़े।

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेख तेरा एहसास गिरास, अहन इस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावें जियो रह नाही, मत विच मरण जी

क्या हो आखां आख वखाणी तू आपे जाने सर्व डाणी नानक एको दर्दी बाण गुरमुख साच तहां गुदराण आसा महला पहला काची गागर दे दोहेली उपजे बिनसै दुख पाई एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है बिन हर गुर पार ना पाई तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे तुझ बिन अवर ना कोई हरे सरबी रंगी रूपी तू है तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ सास बुरी घर वास ना देवे फिर स्यो मिलना दे बुरी सखी साजनी के हों चरण सरेवा हर गुर कृपा ते नदर तही आप विचार मार मन देखिया तुम सामीत ना यवर कोई जो तू राखै तिवही रहना दुख सुख देवै करै सोई आसा मनसा दो बिनास्त त्रिगुण आस निरास पई तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है संसवा की ओट लही ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप जिस हर हिरदय अलाख्या पेवा नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आसा महला पहला पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार मोह तुम तजो सगल वेकार मोह अर भरम तजो तुम वीर साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ सच नाम जान नव निद पाई रोवै पूत न कल्पै माई एत मोहे डुबा संसार गुरमुख कोई उतरै पार एत मोहे फिर

नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए, आसा महला पहला। आप करे सच अलाख्या पार, हम पापी तू बख्शन हार। तेरा पाणा सब किश होवै, मन अठकी चै अंत विगोवै रहाओ। मन मुख की मत कूड व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी। दुरमत त्याग लाहा किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई। सगली सौंदी तोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला, चौपदे विद्या विचारी, ता पर उपकारी। जा पंचरासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै। तौ जम कहां करे, मोस्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी। दया दिगंबर।

एक ना परिया गुण कर तोवा मेरा सौ जग हो निष्परसोवा इओ क्यों कंत प्यारी होवा सौ जग हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बंतान पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पहले उदासी रहो निराशी रहाओ हाउ मैं खोए करे सिंगार तव कामन से जरवे पतार तव नानक कंते मन पावे छोड़ वडाई अपने खसम समावे रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी ए

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबियाले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइस तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फलकाम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो वंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवे लख जाहे जा पत लेखे ना पवै ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजय कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच

प्रणवै नानक जात कैसी, आसा घर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पीतर पंच गुप्त मन वासे, थिर न रहै जैसे पवै उदासे, मन मेरा दयाल से ती थिर न रहै

पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीवड़ा चल नहारो। पंच सखी मिलर्दन करे हा, साहो पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। एको अंकार सतगुर प्रसाद, आसा कर शेवा महला पहला। मन मोती जे गहना होवै, पौन होवै सूत तारी। खिमा सिंगार कामण तन पहरै, रावै लाल प्यारी। लाल बहुगुण कामण मोही, तेरे गुण होहे ना अवरी रहाओ। हर हर हर कंठ ले पहरै, दामोदर दंत ले। कर कर करता कंगन पहरै, इन बिद चित तेरे। मद सूदन कर मुंदरी पहरै, परमेसर पट ले। तीरज तड़ी बंदावै कामण, श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले, काया सेज करे। ज्ञान राओ जब से जय आवै, ता नानक भोग करे। आसा महला पहला, कीता होवै करे कराया। तिस क्या कहियै भाई, जो किश करना सो कर रहया। कीते क्या चतराई, तेरा हुकुम भला तुद पावै। नानक तां को मिलै वडाई, साचे नाम समावै रहाओ। किरत पया परवाना लिखिया, बाहुड़ हुक्म ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सकै कोई। जे को दरगै बहुता बोलै, नौ पवै बाजारी। सतरंज बाजी पक्कै नाहीं, कच्ची आवै सारी। ना को पढ़िया पंडित बीना, ना को मूर्ख मंदा। बंदी अंदर सिफत कराए, ता को कहिए बंदा। आसा महला पहला, गुर का शब्द मनै मैं मुंदरा। खिंथा खिमा हंडावो, जो किश करै पला।

भगत रता जन सहज सुभाए, गुर कै पैसा चै सहज समाए, बिन गुर पूरे भगत ना होए, मन मुखरुने अपनी पत खोए, मेरे मानो हर भज मेरे मानो हर जप सदा ते आए, सदा आनंद होवै दिन राती, जो इच्छा सोई फल पाए रहाओ, गुर पूरे ते पूरा पाए, हृदय शब्द सच नाम वसाए, अंतर निर्मल अमृत सरन आए, सदा सूचे साज समाए, हर प्रभ वेखै सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर ना कोए, गुर सागर पूरा भंडार, ऊतम रतन जवाहरिया पार, गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्से बख्शन हार, आसा महला तीजा, गुर सायर

राए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाणै आवन जान रहै थिर नाम समाणै जम्मण मरना है संसार मन मुखा चेत।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ। जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे, थिर ना रहे मन खोट कमाहे। हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है, एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए। हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावै, प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवै। आसा महला चौथा, हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर लख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना, एको रव रहया कट अंतर, मुख बोलो गुरे अमृत बैना रहाओ। मैं मंतन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग, दूजे पाए पवै बिख माया, भाग ही नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरपुरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सैन।

आस सच्चा पाई राग आसावरी कर सोलवे के दो महला चौथा सुधंग एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाँ आंदन हर नाम कीर्तन कराऊं सतगुर मोको हर नाम बताया हाँ हर बिन खिन पल रह ना सकूं रहाओ हमरे श्रवण सिमरन हर कीर्तन हाँ हर बिन रह ना सकूं हाँ एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन किन्हु प्रीत लाई दूजा पाओ रिदतार किन्हु प्रीत लाई मोह अपमान हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान आसावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बतावो री माई हाँ हर बिन खिन पल रह ना सकौ जैसे कर हल बेल रिजाई रहाओ हमरा मन बैराग बरगत पायो हर दर्शन मीत कहताई जैसे अल कमला बिन रह ना सके तैसे मोहे हर बिन रह ना जाई राग शरण जगदीशर प्यारे मोहे सरदा पूर हर गोसाई जन नानक मन आनंद होत है हर दर्शन निमख दिखाई राग आसा कर दूजा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया जिन सुख बैठाली तिस पौ बहुत दिखाया भाई मीत कुटुंब देख बिबादे हमें आई वसगत गुर प्रसादे ऐसा देख बिमोहत होए साधक सिद्ध सुरदे मनुखा बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम वे आपे एक संचय गृही तिन होए ना आपे एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे हम हर राखे लग सतगुर पावे तप करते तपसी पूलाए पंडित मोहे लोभ सवाए त्रैगुण मोहे मोहया आकाश हम सतगुर राखे दे कर हाथ ज्ञानी की होए वर्ती दास कर जोड़े सेवा करे अरदास जो तू कह है सो कार कमावा जन नानक गुरमुख नेड़ ना आवा आसा महला पंजवा ससू ते

जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावै सो उतरै पार। जन्म ना मरै ना आवै ना जाए, हर सेती ओरै समाए। आसा महला पंजवां, निज भगती सीलवंती नार। रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह वसै सो ग्रह शोभावंता। गुरमुख पाई किने विरलै जनता, सुकरणी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज पर थाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता के साथ। तिचर कंत बो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया। गुरयाणी घर मैं ता सर्ब सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगढ़ स्वरूप। इच्छ पूरे मरकंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी। सब परिवार है माहे श्रेष्ठ, मती देवी देवर ज्येष्ठ। धन सो ग्रेहो जित प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विहाए।

पंजवा मता करो सो पकन ना देई, सील संयम के निकट खलोई। वेश करे बहुरूप दिखावे, गृह बसन ना देई वख वख परमावे। घर की नायक कर वासना देवे, जतन करो और जाए परे वै रहाओ। तुर की पेजी आई अमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर। तड़ तीर्थ ना छोड़े जोग सन्यास, पढ़ था के सिमृत वेद अभ्यास। जह बैसा तह नाले बैस, सगल भवन में सबल प्रवेश। होछी शरण पया रहन ना पाई, कहो मीता हों कै पह जाई। सुन उपदेश सतगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वसिया गुण गाय अनंता, प्रभ मिलियो नानक पय अचिंता। कर मेरा एह नायक हमारी, एह अमर हम गुर की ए दरबारी। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। द्वितीये मता दोय मानख पहुंचावो। तृतीये मता किश करो उपाया, मैं सब की छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सहजाया, दुश्मन दूत मोहे सुख पाया। रहाओ सतगुर मौका दियो आ उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश। जो किश करी सो तेरा तान, तू मेरी ओर तू है दीवान। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै तार, आन ना बिया तेरी समसर। तेरे सेवक किसकी कान, सगत पूला फरे बेबान। तेरी वड्याई कही ना जाए, जह कह राख लह गल लाए। नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ राखी पैज वजी वाधाई। आसा महला पंजवा, परदेश जाग सब देखो आया। वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले यानी। देख रतने मन लपटानी, सावा पारी द्वारे आए। वखर काडाओ सौदा कराए। रहाओ साहे पठाया साहे पास, अमोल रतने अमोला रास। विष्ट सो भाई पाया मीत, सौदा मिलिया निश्चल चीत। पाओ नहीं तस्कर पाओ ना पानी, सहज विहाजी सहज ले जानी। सत कै खटे दुख नहीं पाया, सही सलामत कर ले आया। मिलिया लाहा पै आनंद, तन सा पूरे बख्शिंद। एहो सौदा गुरमुख किने विर लै पाया, सहली खेप नानक लै आया। आसा महला पंजवा, गुण अवगन मेरो कछ ना बिचारो। नै देखियो रूप रंग सिंगारो, चज आचार किश बिद नहीं जानी। बहा पकर परे से जयानी, सुन बो सखी कंत हमारो। की अलो खसमाना, कर मस्तक धार राख्यो कर अपना। क्या जाने हो लोका जाना। रहाओ सुहाग हमारो अब हुन सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो। आंगन मेरा सोबा चंद, निस्बासर प्रे संग आनंद। वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगलिया परण सोबा कंठ फूल। प्रे पेखी दृष्ट पाए सगल निधान, दुष्ट दूकी चूकी कान। सद खुशियां सदा रंग माने, नौ निध नाम ग्रह मह त्रिपताने। कहो नानक जो परै सिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी। आसा महला पंजवा, दान दे कर पूजा करना। लैत देत उन मुकर परना, जित दर तुम है ब्राह्मण जाना। तित दर तू ही है पछताना, ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई। निरापराध चितवै बुरियाई। रहाओ अंतर लोभ फिरे हलकाए, निंदा करै सिर पार उठाए। माया मूठा चेतै नाही, भरमे पूला बहुती राही। बाहर बेख करै कनेरे, अंतर बिखिया उतरी घेरे।
अवर उपदेशै आप ना बूझै, ऐसा ब्राह्मण कहीं ना सीजै। मूर्ख

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए, भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए। तपत बुझी गुरसब दी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा, गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ। तावत रहे एक एक बुझिया, आए बसे अब नहीं चल थाए, जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए। जन्म दोख परे मेरे पछ है, अब पकड़े नहीं।

ना पतियारा अनक सुगंधत तन मैं लावो ओह सुख दिल समान नहीं पावो मन मैं चितवो ऐसी आसाई प्रे देखत जीवो मेरी माई माई कहां करो यो मन ना धीरे प्रे प्रीतम बैराग हिरा रहाओ वस्त्र पे भूखन सुख बहुत बसेख है ओए पी जानो कितै ना लेख है पत शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत गृह ऐसा है सुंदर लाल प्रभावा ता सदा निहाल बिंजन भोजन अनक प्रकार रंग तमाशे बहुत विस्तार राज मिलख अर बहुत फुरमाइस मन नहीं त्रापै तृष्णा ना जायस बिन मिलबे एहो दिन ना बिहावै मिले प्रभु ता सब सुख पावै खोजत खोजत सुनी एह सोए साध संगत बिन तरयो ना कोए जिस मस्तक भाग तिन सतगुर पाया पूरी आसा मंत्र बताया।

सोहनी स्वरूप सुजान विचखन अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ अत सूची तेरी पाकसाल कर इशनान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान सब बिद खोई लोभ सुवान कापर पहरै पुगै भोग आचार करै शोभा मै लोग चोवा चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर जोन।

तीन सेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्तो तुझ पाहे अमान। बिष्टा अस्त रक्त परे टेचाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वस्त बुझे ता होवे पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर कौ कुरबान, जिसते पाइए हर पुरख सुजान। आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे। एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे। एक पल दिनस मोको कवो ना बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको परे मिलावे रहाओ। चार पहर चौ जुगे समाने, रहन पई तब अंत न जाने। पंच दूत मिल परो विछोड़ी, परम परम रोवे हाथ पिछोड़ी। जन नानक हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। आसा महला पंजवा, हर सेवा मैं परम निधान। हर सेवा मुख अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई। दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहां डराई रहाओ। हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माहे दीबान। हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन खट्टी हर मेरा सा हो। गुर कृपा ते एह मत आवे, जन नानक हर कै अंक समावे। आसा महला पंजवा, प्रभ होए कृपालता एहो मन लाई। सतगुर सेव सवै फल पाई, मन क्यों बैराग करेंगा। सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृत सर सद ही पर पूरा रहाओ। चरण कमल और हृदय अंतर तारे, प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राए, सुख रैण में हानी सह सुभाए। आसा महला पंजवा, कर कृपा हर प्रगटी आया। मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिय पाई। पाहे न जाले जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई रहाओ। तोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रया गाए। सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग वरसाना। तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लहना, जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाड परानी। जो जन्मे सो जानो मुआ, गोविंद भगत असर है थिया रहाओ। दिन ते सर

जागे। कहो नानक गुण गाइए नीत, मुख उजल होए निर्मल चीत। आसा महला पंजवा, नवनिध तेरा सगल निदान, इच्छा पूरक रखे निदान। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मन वसिया लगे न दुखा रहाओ। जो तू करे सोई प्रवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावे ता हर गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वरतै रूप रंगा। करै ना चुरै ना मन रोम नहारा, अवनासी अवगात्या गोचर। सदा सलामत खसम हमारा रहाओ, तेरे दास

वेमो ताजा वे प्रवाहो नानक दास कहो गुरवाहो आसा महला पंजवां हर रोड़ होशै रसमाता घर मैं वस्त बाहर उठ जाता सुनी ना जाई सच अमृत काथा रार करत झूठी लग गाथा रहाओ वजो साहेब का से बिरानी ऐसे गुनैशा देव प्राणी तेस्यो लूक जो सदही संगी कामना आवै सो फिर मंगी कहो नानक प्रभ दीन दयाला ज्यो पावै त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवां जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल चरण कमल स्यों लागो मान सतगुर तूठे कीनो दान नानक कौ गुर दीख्या दीन प्रभ अबनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बिनोद परे पुरतारिया अपना कार्य आप सवारिया पूर समगरी पूरे ठाकर की भरपुर धार रही सोभ जा की रहाओ नाम निदान।

साथ पूरा गुर पूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड़ियाई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो इहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरा हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन साचे नाए अठसठ मज्जन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंत

माया गुरपुरे प्रगट मार्ग दिखाया। जाप ताप कश युगत न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी। आसा महला पंजवा ते पदे दो हरस पीवत सद ही राता आन रसा खिन मैं लै जाता। हर रस के माते मन सदा आनंद आन रसा मैं व्यापै चिंद। हर रस पीवै अल मस्त मतवारा आन रसा सब हो छेरे रहाओ। हर रस की कीमत कही ना जाए हर साधु हर सुमाए। लाख करोरी मिले ना के हे जिसे प्राप्त तिस ही दे हे। नानक चाख पए बिस्माद नानक गुरते आया साद। ईत ऊत कत छोड़ ना जाए नानक गीदा हर रस माहे। आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावै छुटकै दुरमत अपनी तारी। होए नमाणी सेव कुमावै ता प्रीतम होवै मन प्यारी। सुन सुंदर साधु बचन उधारी दुख भूख मिटै तेरो सहसा सुख पावै तू सुख मन नारी। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा आत्म सुध बिखत्यास निवारी। दासन की होए दा दासरी ता पावै सो बाहर द्वारी। इही आचार इही ब्योहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी। जो एहो मंत्र कमावै नानक सो भौजल पार उतारी। आसा महला पंजवा दो पदे पही प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै नाकाम। मिल साध संगत पज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै। रहाओ जप तप संजम तर्म ना कुमाया सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा। आसा महला पंजवा तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा। तू मेरे मन माही तू साजन संगी पर मेरा काहे जी डराही। तुमरी ओढ़ तुम्हारी आसा बैठत उठत सोबत जागत। विसर नाही तू सास गिरासा रहाओ। राख राख सरन प्रभ अपनी अग्न सागर विकराला। नानक के सुखदाते सतगुरु हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए। प्रीतम स्यो मेरो मन मान्या ताप मुआ बिख खाए रहाओ। पाला ताऊ कछु ना व्यापै राम नाम गुण गाए। डाकी कोचित कछु ना लागै चरण कमल शरणाए। संत प्रसाद पय कृपाला होए आप सहाय। गुण निदान नित गावै नानक सहसा दुख मिटाए। आसा महला पंजवा औख दिखायो हर को नाओ। सुख पाए दुख बिनसिया थाओ। ताप गया बचन गुरपूरे अंध पया समिटे विसूरे रहाओ। जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। आसा महला पंजवा बांशत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों बुझै बुझाई। ठंडी ताती मिट्टी खाई ओहना बाला बूढ़ा पाई। रहाओ नानक दास सा सरनाई गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवा सदा सदा आया तुम परगास सा संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे शीतल सांस सदा सुख पावै। किल विख जाहे सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूर्ण कर्म सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म। दूजे करके चौतीस आसा महला पंजवा। जा का हर स्वामी प्रबेली पीड़ गई फिर नहीं दुहेली रहाओ। कर कृपा चरण संग मेली सुख सहजा आनंद सुहेली। साध संग गुण गाया तोली हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਤ ਮਦ ਸਰ ਇਹ ਖੇਲਤ ਸਭ ਜੂਐ ਹਾਰੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਾਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਭਾਰੇ ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਪਇਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਰਹਾਓ ਸਭ ਕੀ ਰਿਣ ਹੋਏ ਰਹਿ ਮਨੁਆ ਸਗਲੇ ਦੀਸੈ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਮੱਧੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਭ ਜੀ ਸੁਮਾਰੇ ਏਕੋ ਏਕ ਆਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਏਕੈ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾ ਸਾਰੇ ਜਪ ਜਪ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਬਹੁਤੇ ਉਧਾਰੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗਤਿਆ ਗੋਚਰ ਇਹੋ ਸਭ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਕਿਆ ਹਮ ਜੰਤ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੇ ਤੁਜੈ ਮਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਰਾਖੋ ਲੀਲਾ ਧਾਰ ਦੇਹ ਸੁਮਤ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਅਗਮਿਆ ਪਾਰ ਰਹਾਓ ਜੈਸੇ ਜਨਨ ਜਠਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਓ ਰੇਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੁਮਾਰੈ ਨਾ ਪੋਹੈ ਅਗਨਾਰ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਵਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇਵੀ ਦੇ ਦਯੰਤਰ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੈ ਆਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਿਰ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਦੀਸੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਾਰ ਜਬ ਲਗ

राज मिलक जोवन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्भ हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगे काम न आवै छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ। महा विचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन, महामोहनी मगन, प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वड़भागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता स्याण पजन की, जो तू करै करावे रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त अगाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे, इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावे। निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंचना साके काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहा बिकूता जय कोई ना राखे, ओ किस पै करे पुकारा। निंदक की गत कतहु नाही, खसमे एवे भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रोड़ाई। आसा महला पंजवा, बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साफ न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्रन को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचै आप निवारे, पंच जनाले वसगत रखे, मन में एक अंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावै, रबाब पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावै रहाओ। प्रथमे मन परबोधै अपना, पाछै अवर रिझावै, राम नाम जप हृदय जापै, मुखते सगल सुनावै। कर संग साधु चरण पुखारै, संत तूर तन लावै, मन तन अर्प तरे गुरिया गै, सत पदार्थ पावै। जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਪਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਈ ਰੇ, ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਸਖਨੀ, ਲਹਿਬਰ ਬੂਜੀ ਖਾਈ ਰੇ, ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ, ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀ ਨੋਕੇ ਹਰ, ਕੂਕਰਤ ਨੈ ਲਗਾਈ ਰੇ ਰਹਾਓ। ਬਾਜ ਥੂਨਿਆ ਛਪਰਾ ਥਾਮਿਆ, ਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪਾਇਆ ਰੇ, ਬਿਨ ਜੜੀਏ ਲੈ ਜੜਿਓ ਜੜਾਵਾ, ਥੇਵਾ ਅਚਲ ਜਲਾਇਆ ਰੇ, ਦਾਦੀ ਦਾਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ, ਚੂਪੀ ਨਿਰਨੋ ਪਾਇਆ ਰੇ, ਮਾਲ ਦੁਲੀ ਚੈ ਬੈਠੀ ਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਨੈਣ ਦੇ ਖਲ ਧਾਇਆ ਰੇ, ਸੋਈ ਅਜਾਣ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅਮਿਓ ਪੀ ਆਇਆ, ਰਸਕ ਰਸਕ ਬਿਗਸਾਨਾ ਰੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਬੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ, ਅਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਰਿਆ, ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਾਤ ਪਿਤ ਨਿਆਈ, ਬਾਰਕ ਜੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਿਆ, ਗੁਰਸਿਖ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਕਾਢ ਲੀਏ ਮਹਾਂ ਭਵਜਲ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਰਹਾਓ। ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਮ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਐ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਪਾਈ ਐ, ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਹ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ, ਨੀਤ ਨੀਤ ਗੁਣ ਗਾਈ ਐ, ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਹ ਸੰਗ ਦੁਖ ਨਾਠੇ, ਛਿਜੈ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਛ ਭਉ ਨਾ ਬਿਆਪੈ, ਹਰ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਗਾਠੇ, ਅੰਤਕਾਲ

सब जग बौराया ना मिले सुख पाइया। क्या कहिए किसे आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभु जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देहे वड़े आई ता तेरी वड़े आई, एत्यो तुझे ते आओ, नानके प्रभु सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठारथियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काई तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। तन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, तन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार ही हो। आसा महला पंजवा, आगे ही ते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, भूल चूके अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंधकूप महाकोरते बहा पकर गुर काढ़ लिए। निरपौ पय सगल पौ मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्य सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जीत तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रखै, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिसको बेपना।

करो संयम कौन छुट्योरी। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्योरी। दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बनेओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुनेओरी। कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा। लाल चोलना तै तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुरग्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल प्रभ आप सिंगार सवारन हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा। दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर। चुका निहोरा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट आन प्रे से तरी कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा। साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना तरता। दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा। पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया। कान कुंडलिया वस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया सरन नानक प्रपुरख दयालिया। आसा महला पंजवा। एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहा मैं फलिया। ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइये पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल ना काई। अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया नानक दास धरी तिन माया।

सोव स्थान बतावो मिता, जाके हर हर कीर्तन निता रहाओ। शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। प्रभ कृपा ते मन वसे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया। साध संग हर कीर्तन गाइया, एहो अस्थान गुरु ते पाई है। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बाहर फन सुखा। हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै। सो नाम जपै जो जन तुद पावै। रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान, सास सब जा का निशान। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, पणत नानक मेरे मन सुख पाया। आसा महला पंजवा, जहां पठावो तैं तैं जाई। जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई। तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई। रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई। मन तन अंतर तुझे ते आई।

पंजवा उठत बैठत सोवत्याई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है, श्रवण सुनिजय अमृत कथा, जा सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग मन सगले लथा रहाओ, कार्य काम बाट घाट जपीजै, गुर प्रसाद हर अमृत पीजै, दिन सरायण हर कीर्तन गाई है, सोजन जमकी वाट ना पाई है, आठ पहरो जिस विसरै नाही, गत होवे नानक तिस लग पाई, आसा महला पंजवा, जाकै सिमरन सुख निवास, पई कल्याण दुख होवत नास, आनंद करो प्रभ के गुण गावो, सतगुर अपना सद सदा मनावो रहाओ, सतगुर का सत शब्द कमावो, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावो।

हर माला वर्यंतर धारै, जन्म मरण का दुख निवारै, हृदय संभालै मुख हर हर बोलै, सो जन इत उत कतै न डोलै, कहो नानक जो राचै नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करै सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा, जौ सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम कहो कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोहे निर्गुण को लेहो उधारी रहाओ, मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओह करमा, जा कै मन वसिया हरनामा, आसा महला पंजवा, काम क्रोध अहंकार विगूते, हर सिमरन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ, मोह परम बहुजोन पवाया, अस्थिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंधकूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुजै हर नेरा, कहो नानक जो प्रभ सरनाई, इहा सुख आग्या गत पाई, आसा महला पंजवा, तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकर हम तेरे द्वारे, तू मेरा करता हम सेवक तेरा, शरण गही प्रभ गुनी गहेरा रहाओ, तू मेरा जीवन तू आधार, तुझे पेख बिकसै कौलार, तू मेरी गतपत तू प्रवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अंदन जपो नाम गुणतास, नानक की प्रपै अरदास, आसा महला पंजवा, रोवन हारै झूठ कमाना, हासा सो करत बेगाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवै को हासस पावन रहाओ, बाल व्यवस्था ते बरदाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहु गुण में वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ता का परवान, आसा महला पंजवा, सोए रही प्रभ खबर ना जानी, पोर पया बहर पछतानी, प्रे प्रेम सहज मन अंध धरोरी, प्रभ मिले बेकी लालसा, ताते आलस कहां करोरी रहाओ, कर मैं अमृत यान निसारयो, खिसर गयो पूम पर डारयो, साध मोहे लादी हंकारे, दोष नाही प्रभ करणे हारे, साध संग मिटे भरम अंधारे, नानक मेली सृजनहारे, आसा महला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, तू चित आवै तेरी मया, सिमरत नाम सगल रोखया रहाओ, अनक दुख देवै अवरा कौ, पहुंच ना साकै जन तेरे कौ, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहजानंद बसै बैरागी, नानक की अरदास सुनी जै, केवल नाम हृदय मैं दीजै, आसा महला पंजवा, मन तृप्तानो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद भली बनी, जा कै गृह सब किश है पूर्ण, सो भेटिया निरपै धनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिट गई भूख महा बिकराल, ठाकुर अपने किन्नी दात, जलन बुझी मन होई सांत,

दस अष्ट सिधाई पलक दिष्ट ताकी लागो पाई। जा कहो दया करो मेरे स्वामी कहो नानक नाही तिनकामी। आसा महला पंजवा जो मैं अपना सतगुर ध्याया तब मेरा मन महा सुख पाया। मिट गई गणत बिना सियो संसार नाम रते जन पए भगवंता रहाओ। जो मैं अपना साहिब चीत तौ पो मिट्यो मेरे मीत। जो मैं उठ गई प्रभ तेरी ता पूर्ण होई मनसा मेरी। देख चलत मन पए दिलासा नानक दास तेरा प्रवासा। आसा महला पंजवा अंदर मूसा लाई टुकाई गिरत कु मैं खाए मिठाई। सोचत साचत रैन बिहानी अनक रंग माया के चितवत कबू न सिमरै सारंग पानी रहाओ। द्रुम की छाया निचर ग्रहो बांधिया काल कै फांस सख्त सर सांधिया। बालू किनारा तरंग मुख आया सो थान मूड़ निचल कर पाया। सा संग जप्यो हर राय नानक जीवै हर गुण गाए। आसा महला पंजवा दो तुके नौ उनकै संग तू करती केर। उनकै संग हम तुम संग मेल उनकै संग तुम सब को लोरै। उस बिना को मुख नहीं जोरै ते बैरागी कहां समाए। तिस बिन तुही दोहे रीरी रहाओ। उनकै संग तू ग्रह मैं माहर उनकै संग तू होई है जाहर। उनकै संग तू रखी पपोल उस बिना तू छुटकी रोल। उनकै संग तेरा मान महत उनकै संग तुम साख जगत। उनकै संग तेरी सब थाटी उस बिना तू हुई है माटी। ओह बैरागी मरे ना जाए हुक्मे बांदा कार कमाए। जोड़ विछोड़े नानक थाप अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा ना ओह मरता ना हम डरिया ना ओह बिनसै ना हम कड़िया। ना ओह निरतन ना हम भूखे ना उस दुख ना हम कौ दुखे। अवर ना को मारन वारा जियो हमारा जियो देनहारा रहाओ। ना उस बंधन ना हम बांधे ना उस तंदा ना हम तांदे। ना उस मैल ना हम कौ मैला उस आनंद ता हम सदकेला। ना उस सोच ना हम कौ सोचा ना उस लेप ना हम कौ पोचा। ना उस भूख ना हम कौ तृष्णा जाहो निर्मल ता हम जचना। हम किश नाही एक ओही आगे पाछे एको सोई। नानक गुरखोए परम पंगा हम ओए मिल होए एक रंगा। आसा महला पंजवा अनक पात कर सेवा करिए जियो प्रांतन आगे धरिए। पानी पखा करो ता जब मान अनक बार जाइए कुर्बान। साई सुहागन जो प्रभाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ। दासन दासी की पनिहार उनकी रण बसै जी नाल। माथे भागता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग। जाप ताप देवो सब नेमा कर्म धर्म अर्पो सब होमा। गर्भ मोह तज हो बोरेन उनके संग देखो प्रभ नैन। निमख निमख एही आरा दो दिन सरैन ए सेवा सादो। पय कृपाल गोपाल गोबिंद सा संग नानक बख्शिंद। आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए। प्रभ की प्रीत दुख लगे ना कोए। प्रभ की प्रीत हम मैं मल खोए प्रभ की प्रीत सद निर्मल होए। सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार जी प्राण कटकट आधार रहाओ। प्रभ की प्रीत पय सगल निदान प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम। प्रभ की प्रीत सद शोभावंत प्रभ की प्रीत समिटी है चिंत। प्रभ की प्रीत एहो पव जल तरै प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै। प्रभ की प्रीत सगलो उधार है प्रभ की प्रीत चले संगार है। आपो कोई मिले ना भूलै जिस कृपा।

कहो नानक तेरा कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान। आसा महला पंजवा, पूपत होए कै राजक माया, कर अनर्थ बिहाजी माया। संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी। काच गगरिया

संगा लश्कर जोड़े किया संबाहा निक्षा फूकता हुए गयो सुवाहा ऊंचे मंदिर महल अरानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत यार तिया मोहे पचे पच अंधा मुआ जिने उपाहा तिने बिनाहा रंग रसा जैसे सुपनाहा सोई मुक्ता तिस राजमाल नानक दास जिस खसम दयाल आसा महला पंजवा इन स्यो प्रीत करी कनेरी जो मिली है तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ै नाही लाग छटो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह बाट काट करे बन बन जो है मन तन लागे हुए कै मीठी गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी अगर उसके वड्डे ठगाऊ छोड़ै नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन पया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने एक नाम संतन आधार होए रहे सब की पगशार संत रहत सुनो मेरे भाई ओवा की महिमा कथन ना जाई रहाओ वर्तन जा कह केवल नाम अनंद रूप कीर्तन विश्राम मित्र सत्र जा कह एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने कोट कोट अग कट नहारा दुख दूर करन जी के दातारा सूर बीर बचन के बली कौला बपरी संती शली ताका संग बांछे सुरदेव अमोग दर्श सफल जा की सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संत है टहल दीजे गुणतास आसा महला पंजवा सगल सुख जप एक नाम सगल धर्म हर के गुणगाम महापवित्र साध का संग जिस पेड़त लागे प्रभ रंग गुर प्रसाद ओए आनंद पावे जिस मृत मन होए परगासा ताकि गत में तो कहन ना जावे रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा महापुनीत जाका निर्मल थान साध संगत जाका हर हर नाम प्रगट्यो सो जन सगले भवन पतत पुनीत ताकि पगरेन जाको पेट्यो हर हर राय ताकि गत में तो कथन ना जाए आठ पहर कर जोड़ते आवाओ उन साधा का दर्शन पावाओ मोहे गरीब को लिहोर लाए नानक आए पै सरनाए आसा महला पंजवा आठ पहर उद किस नानी सद ही भोग लगाए सुगयानी बिरथा काहू छोड़े नाही बहुर बहुर तिस लागे पाई साल ग्राम हमारे

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सभी ऊपर झूलै, ता का धूप सदा प्रफुलै। काट काट संपट है रे जा का, अपग सभा संग है सदा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिसही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गिराम, कहो नानक गुर की नोदान। आसा महला पंजवा पंचपदा, जे पेंड लूटी पनिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लेखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ताकी परम गत होए, आसा कर सतवा महला पंजवा। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवा, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग, आसा महला पंजवा। मीठी आग्या पिर की लागी, सौकन कर की कंत त्यागी। प्रे सोहागन सिंगार करी, मन मेरे की तपत हरी। भलो भयो प्रे कहया मानिया, सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार, ओह अविनाशी अगम्या पार। ले पखा प्रे चलो पाए, पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना शोभावंत, क्या जाना क्यों पानी कंत। मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी, कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा, सुख सहज मेरा तन सोहागा। कहो नानक मोरी पूर्ण आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवा, माथे त्रिपुटी दृष्ट करूर। बोले कौड़ा जेह बाकी फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर। ऐसी स्त्री करामो पाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया। गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना। तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा, हमें पचै मनमुख मूह राखा। गुरु नानक बहा पकर हम राखा, आसा महला पंजवा। सर्व दुख जब बिसरे स्वामी, इहां उहां कामना प्राणी।
संत तृप्ता से हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभ तुम रीति जाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे, महा बिखिया मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरौ एक, गत पाईए गुरपूरे टेक, आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया, कल मल दोग सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर, मिटे उपद्रय मन ते बैर, गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया, पंच दूत सब वसगत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक ते सुपर कुर्बान, आसा महला पंजवा, गाव लेहे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जा की सेवा सर्व सुख पावे, अवर काहू पह भौ ना जावे, सदा आनंद।

जाका दान ने खूट नाही, पली पहात सब सह सुमाही, जाकी बख्श न मेट कोई, मनवा साइय साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जाके पूर्ण, प्रभ के सेवक दुख न चूर्ण, ओट गही निरपो पद पाई है, सास सास सो गुणित गई है, दूर ना होई कतहूं जाई है, नजर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुरपास, नानक मंगे हर तन रास, आसा महला पंजवां, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सल का होवा सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल ते सतगुर को जाओ, गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख विनाशे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अग्न बुझी सब

मन बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वड़े भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जाको भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग। उदरै माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत बिगास। जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया तुर का रहाओ। दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहेब कै मन भावै। वदी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु देवाया, पय अचिंत एक लिव लाया। ज्यो बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुर कै पाण। गुज्जी शनी नाही बात, गुर नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवा, गुर पूरे राख्या दे हाथ। प्रगट भया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई। जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक सेव। जियो पिंड जोबन राखे प्राण, कहो नानक गुर कौ कुरबान। आसा घर अठवां।

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवां, सर्व सुखा मैं पालिया हर जेवड़ ना कोई, गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुरे अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा, एहो की जैदाना रहाओ। पागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटे महा जाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सत सार, ओह आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवां, साई अलख अपार पोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ वंजा कुर्बान साई अपने, होवे अंध घणा मन तन जापने रहाओ। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैण पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेदक तेब संसार

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुरदिता, वणजारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब प्रम पाओ पागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निधाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हों चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहेब की मनिया, नाम जिसे कै उजली तिस दासी गनिया रहाओ। वे प्रवाहो आनंद मैं नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकरे सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कह सो मानिए एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिये एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिछायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेटे हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तऊ लो जो मन के परमा, प्रम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे रहाओ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मेरे हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेवको नानक खसम बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ रहाओ। सगन अप सगन तिस कौ लग है, जिस जीत ना आवे
तिस जम नेण न आवई जो हर प्रभु पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक दूसर कह पह जावो, हाँ मांगो आन ल जावो। सगल छत्रपत एको ठाकर कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो, ताकि शरण सतपुरख की सतगुर पुरख ते आवो। पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो, कहो नानक जो साध संग पावो। कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी। संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के ब्योहारी। अवर बिसारी बिसारी नाम दान गुरपुर दियो, मैं इहो आधारी रहाओ। दुखन गावो सुख पी गावो, मार्ग पंथ समारी। नाम दृढ़ गुरमन में दिया, मोरी तसा बुजारी। दिन पी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रस नारी। सत संगत में विश्वास होए, हर जीवत मर्त संगारी। जन नानक कहो एहो दान देहो, प्रभ पावो संतरेन और तारी। श्रवणी कथा नैन दर्श पेखो, मस्तक गुर चरनारी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा कर दसवा महला पंजवा। जिसनों तू असर कर मानै ते पाहुन दो दाहा, पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मानु क्या करे है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी। एक राम भजन लै लाहा रहाओ, जैसे वस्त्र देह उडाने दिन दोए चार पोराहा। पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा। जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा, आवगे आग्या पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा। अरे मन लेखे चाल लेखे बैसै लेखे लैंदा साहा, सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण ओटाहा। आसा महला पंजवा अपुष्ट बाते पई सिजरी, दूत दुष्ट सजनई। अंधकार मैरतन प्रगासियो मलीन बुद्ध हशनई। जाओ कृपा गोबिंद पई, सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुर मिलई रहाओ। मोहे कृपन को कोई ना जानत सगल पवन प्रगटई। संग बैठनो कही ना पावत हुन सगल चरण सेवई। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते मन सगल त्रिसन बुझ गई। एक बोल पी खपतो नाही साध संगत सीत लई। एक जीही गुण कमन मखाने अगम अगम अगमई। दास दास दास को करियो जन नानक हर शरणई।

ਤੂੰ ਬਸਤਾ ਸੰਗ ਸਗਲ ਬਿਖੈ ਕੀ ਵਿਆਦੇ ਰਹਾਓ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਤੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਵੈ ਪਲਖਿਨ ਛੀਜੈ ਅਰਜਾਦੇ। ਜੈਸੇ ਮਿਠੈ ਸਾਧ ਲੁਬਾਏ ਝੂਠ ਤਨ ਦੁਰਗਾਦੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਲਪਟਾ ਦੇ। ਦੀਪ ਵਾਰੀ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੈ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਜਨਮਾ ਦੇ। ਜੋ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤਉ ਗੁਰਮਿਲ ਸਭ ਸੁਖ ਲਾ ਦੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰੈਨ ਧਿਆਵੋ ਮਾਰ ਕਾਢੀ ਸਗਲਿਓ ਪਾ ਦੇ। ਇਉਂ ਜਪਿਓ ਪਾਈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਲਾਥੇ। ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਕਰੀ ਮੋਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੈ। ਅੰਧੇ ਚੇਤ ਹਰ ਹਰ ਰਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸੋ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਰਹਾਓ ਪਲਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖ ਭੂਲੋ ਆਗ ਨੀਮ ਕੋ ਤੂਮਰ ਜੈਸਾ ਸੰਗ ਬਿਸਿਅਰ ਸਿਉ ਹੈ ਰੇ ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹੋ ਪਰ ਗ੍ਰਿਹੋ। ਬੈਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਬਸਤ ਰਹੀ ਅਮਾਨਾ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿਉ ਸੰਗੀ ਸਾਜਨ ਸਿਉ ਬੈਰਾਨਾ। ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਬਿਦ ਵਿਆਪਿਓ ਸੋ ਉਭਰਿਓ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਿਓ ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਸਰੀਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਲੂਕ ਕਮਾਨੋ ਸੋਈ ਤੁਮ ਪੇਖਿਓ ਮੂੜ ਮੁਗਦ ਮੁਕਰਾਨੀ ਆਪ ਕਮਾਨੇ ਕੌਲੇ ਬਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਿਛਤਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੇ ਆਗੇ ਜਾਨੀ ਭਰਮ ਕੇ ਮੂਸੇ ਤੂੰ ਰਾਖਤ ਪਰਤਾ ਪਾਛੈ ਜੀ ਕੀ ਮਾਨੀ। ਰਹਾਓ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਏ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੈ ਪਰਾਨੀ ਬਖਸ ਲੈ ਹੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਮਾਮੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਿਗਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕਰ ਪਹਿ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਰਹਾਉ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ ਤਿਸ ਨਾਨਕ ਪਰਸਨ ਆਵੈ। ਆਸਾ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਟੂਆ ਪੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਬਹੁਬਿਦ ਜੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈ ਸਾਰੇ ਅਨਕ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਿਉ ਪ੍ਰਮ ਪੀਤਰ ਸੁਖੈ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਹਮਾਰੇ ਮੀਤਾ ਬਿਨ ਹਰ ਹਰਿਆ ਨੀ ਤਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਉਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀ ਤਾਰੇ। ਰਹਾਓ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕੀਨੀ ਕਹੋ ਕਵਨ ਬੇਤਰੀਐ ਰੇ ਘੂਮਨ ਘੇਰ ਅਗਾਹ ਗਾਖਰੀ ਗੁਰਸਬਦੀ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ ਰੇ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰਿਓ ਤਤ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨਾ ਰੇ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਮਨਮਾਣਕ ਪਤੀਆਨਾ ਰੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਪਾਵੋ ਰੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਇਹੋ ਮੰਤਰ ਪਤਾਨਾ ਬਹੁਰ ਨਕਤ ਹੂੰ ਧਾਵੋ ਰੇ। ਹਮਰਾ ਠਾਕਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਤਿਸ ਗਾਵੋ ਰੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪ ਨਹਾਰਾ ਤਿਸ ਤੇ ਤੁਜੈ ਡਰਾਵੋ ਰੇ। ਰਹਾਓ ਜਬ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਤੋ ਅਵਰੈ ਚੀਤ ਨਾ ਪਾਵੋ ਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭਿਆ ਪਹਿਰਾਇਆ ਭ੍ਰਮਪੋ ਮੇਟ ਲਿਖਾਵੋ ਰੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਾਰ ਬਰਨ ਚੌਹਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗਰ ਸਰੂਪ ਸਿਆਨੇ ਪੰਚੋਂ ਹੀ ਮੋਏ ਛਲੀ ਰੇ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰ ਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀ ਰੇ। ਰਹਾਓ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਵਸ ਭਾਗੈ ਨਾਹੀ ਮੁਹਕਮ ਫੌਜਾ ਠਲੀ ਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਨਿਰਦਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਝਲੀ ਰੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ
नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ। बहुगुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लायकी रे, बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा, हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख ना मन ते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे, खिन राम गुरगम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे। आसा महला पंजवा, नीकी सा संगानी रहाओ। पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी, चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हौ हौ रो तू ठाकुर गौरो नानक सरन पछानी, राग आसा महला पंजवा कर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सगल स्यान पा भज पार ब्रह्म निरंकार, एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग गुरप्रसादी बुझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरण समरथ एक केरी दूजा नाही ठाओ, महापौजल लंघिए सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पर होए, नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग, दीन बंदप जी दाता शरण रखन जोग। मेरे मन त्याए हर हर नाओ, हलत पलत सहाय संगे एक स्यो लिवलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जन त्यावे तरण कौ संसार, कर्म धर्म अनेक किरिया सभी ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसै मिले सतगुर देव, नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण शरण दयाल तेरी तू निमाने मान, जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रभतान। आसा महला पंजवा, डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग, खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग। हर को नाम जपिए नीत सास सास त्याए सो प्रभ, त्याग अवर प्रीत रहाओ। करण कारण समर्थ सो प्रभ जी दाता आप, त्याग सगल सियाण पा आठ पहर प्रभ जाप। मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार, चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ, सर्व सुख बड़ी वड़ियाई जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवा, उद्यम करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग, हर हर नाम चिरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग। मन मैं राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखन का चाओ, दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुआओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाहे, ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किलविख काटै मज्जन हर जन तूर, पाए भगत परम पव नासै हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा, अगमै गोचर दर्स तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग, आप कृपाल कृपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव
मलमूत मूड़ जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव रहाओ। तू आप करता सब श्रेष्ठ तरता सब मैरिया समाए धर्म राजा बिस्माद होवा सब पई पैरी आए। सतयुग त्रेता द्वापर पणी है कलयुग ऊतमो जुगा माहे अह कर करे सो वह कर पाए कोई ना पकड़िया किसै थाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद कर जोड़ नानक दान मांगे अपने संतां दे हर दर्स। राग आसा महला पंजवां कर तेरवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनी संगारे नरक पवंते नरक पड़ंते तिनके कोले उदारे। कोय न जाने कोय न माने से प्रगट हर द्वारे कवन उपमा देव कवन वडाई नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कुटंब बिखैर असमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे। कर कृपा राखे सत संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ते पदे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणक गज मोतियन लालन नै ना नहीं राजन भागन हुक्म ना साधन किश किश ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ इते उते कट कट कट कट तू ही मोहेना कारण करना तारण करना एक है सोहेना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोएना। आसा महला पंजवा हर हर नामया मोला ओहो सह सोहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओहो अगे अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हरका चोला आसा महला पंजवा। अपनी भगत निबाहे ठाकर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एह मुक्ता एह जुगता राखो संत सगाहे। नाम ते आवाओ सह समावाओ नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा। ठाकर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेवक माया गुण रस रस गावे एक आसा दर्श प्यासा या ना पावे। दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा। एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते अवरदय बसावो तिस बिन को नाही प्रभ सरणी आईय सरफल पाईय सगले दुख जाही। जियन को दाता पुरख विदाता नानक कटकट आही आसा महला पंजवा। हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवै सर्व फल पावै सोजन सुखिया हुआ राज कहावै हो कर्म कमावै बांध्यो नली परम सुआ। कहो नानक जे सतगुर भेटिया सोजन ने चलथिया आसा महला पंजवा। कर चौदवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओहो नेहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रह रहाओ। जो प्रभ पावै जन्म ना आवै हर प्रेम भगत हर प्रीत रचै प्रभ संग मिली जय हो मन दीजै नानक नाम मिलै अपनी दया करहो आसा महला पंजवा। मिल राम प्यारे तुम बिन धीरज को ना करै रहाओ
सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए, प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही। वर्त नेम संयम कर थाके, नानक साध सरण प्रभ संग वसै। आसा महला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बिकार माया माद सोयो, सूई बूझ ना आवै। पगर केस जम उठारियो, तद ही कर जावै। लोभ बिखिया बिखै लागे, हिर वित चित दुखाही। खिन भंगना कै मान माते, असर जाणै नाही। रहाओ वेद शास्त्र जन पुकारै, सुनै नाही डोरा। निपट बाजी हार मुका, पछतायो मन भोरा। दान सगल गैर वजह भरिया, दीवान लेखै ना परिया। जेहे कार्ज रहै ओला, सोए काम ना करिया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो, तो एक कीर्त गाया। मान तान तज सियानप।

गुण गोविंद गावो, आंदनो प्रभ त्यावो, भ्रम पीत जीत मिटावो, निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवां। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम। रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म, हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग, आसा महला पंजवां। हरख सोग बैराग आनंदी, खेल री दिखायो रहाओ। खिनहु पै निरपै खिनहु, खिनहु उठतायो, खिनहु रस भोगन खिनहु, खिनहु तजायो। खिनहु जोग ता बौ पूजा, खिनहु परमायो, खिनहु कृपा साधु संग, नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवां, कर सतारवां आसावरी, एको अंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड़ नर हां, अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरण पैरी सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां। राजन योग कर हां, कहो नानक लोग या लोगीरी सखी, आसावरी महला पंजवां। मनसा एक मान हां, गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुर चरान हां, तौ मिलिया गुर कृपान मेरे मना। रहाओ टूटे अन प्राण हां, रहो सर्व थान हां, लयो जम भयान हां, पायो पेड़ थान हां। तौ चूकी सगल कान, लैनो जिसम थान हां, पै पावक पार प्राण हां, निज कर तिसै थान हां, हर रस रसै मान हां, लाथी तिस पुखान हां, नानक सह समायो रे मना। आसावरी महला पंजवां। हर हर हर गुनी हां, जपिया सह तुनी हां, साधु रसन पनी हां, छूटन बिद सुनी हां, पाइय वड पुनी मेरे मना। रहाओ खोजै जन मुनी हां, सर्व का प्रभ तनी हां, दुलभ कल दुनी हां।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला साई टकावे सो नर गर्भ जोन न आवे। जहां नाम मिले तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी नामे राता। मेरा प्रभ लाए ता को लागे हम मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मन मुख मैला शब्द ना पछाने गुरमुख निर्मल नाम वखाने। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास किल विख दो काटे हर नाम परगास। कर बीचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है कर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बक्से सदगुर मिलै काल कंटक मारे सच पेलै। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा सागत लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपता पै गुरमुख चीने हर प्रभ आपै। मन बैरागी हम मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाख है दर कर महली हर पत राखै। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हम मैं ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद्यंत त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई। अह निस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो प्रभ आ जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गुरपाला ज्यो भावे त्यो रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देखै विण गुर शब्द जन्म के लेखै देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मन माही तुम संसार अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि ध्यान छूटै गुरमुख हर गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पै हर रंग आसा महला पहला एक तुगी। गुर सेवे सो ठाकर जान दुख मिटै सत शब्द पछानै। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पोतो कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान। हो मैं डन सह राजा मंगे दान। बंधन सबदा अण विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी। बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद अहंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरण आई, सतगुरु राखे बंधना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर। से सरकाती मुनियां, गल विच आवे धूड़। महलां अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया। कर कर देखे वेस रहाओ। जदो सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास। ही डोली चढ़ आईया, दंद खंड कीते रास। उपरो पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया। गरी शोहारे खांदिया, मान से जड़िया। तिन गल सिलका पाईया, टुटन मोसरिया। तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए। जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए। अगों दे जे चेती है, तां कायत मिले सजाए। साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे। बाबर वाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए। इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए। चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेते, हुण कहण न मिले खुदाए। एक घर आवे अपने, एक मिल मिल पुछे सुख। एक ना हो लिखिया, बैबे रोवे दुख। जो तिस पावे सोथी है, नानक क्या मानुख। आसा महला पहला, कहा सो खेल तबेला कोड़े। कहा पेरी सहनाई, कहा सो तेग बंद गा ढेरड़। कहा सो लाल कवाई, कहा सो आरसिया मोबंके। ऐथे दिसै नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई। एक कड़ी मैं थापो थापे, जर वंड देवे पाई रहाओ। कहां सो करदार मंड मेला, कहां सो बंकसराई। कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान तंबोली हरमा, होइया शाही माई। इस जर कारण कणी मगुती, इन जर कणी खुवाई। पापा बाजो होवे नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनों आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई। कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया। थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किनना परचा लाया। मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस चढ़ाई। जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिन्ना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी। एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वस मसाणी। जिनके बंके करी ना आया, तिन क्यों रैण विहानी। आपे करे कराए करता, किसनों आख सुनाई है। दुख सुख तेरे पाना होवे, किसथे जाई रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाई है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा काफी महला पहला। कर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। कूड़ कमावे आदमी, बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ। नीत नीत कर बांधी है, जे रहना होई। पिंड पवे जियो चल सी, जे जाने कोई। ओही ओही क्या करो,

पूरी मत भाई, आदि जुगाद निरंजना जन हर शरणाई। साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साचे परथाई। गुरबिन किने ना पायो, केती कह कहाए, आप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगदड़ाए। मनमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए, बिन हर नाम ना छूटसी मर नरक समाए। जन्म मरे प्रमाई है हर नाम ना लेवै, ताकि कीमत ना पवै बिन गुर की सेवै। करनी सेव कराई है करनी पीसाई, आप करे किसे आखिए वेखे वड़ियाई। गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए। नानक सिर दे छुटिया दरगे पत पाए, आसा महला पहला। रूड़ो ठाकुर महरो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे पग सतगुर मिले पाइये पग निर्बाणी। मैं ओ लगिया ओ लगी हम शोरू थारे, जो तू राखे त्यो रहा मुख नाम हमारे। रहाओ दर्शन की प्यासा कणी, भाणे मन पाई है मेरे ठाकर हाथ वड्याईया। भाणे पत पाई है साचो दूर ना जानिए, अंतर है सोई जै देखा तै रव रहे किन कीमत होई। आप करे आपे हरे वेखे वड्याई, गुरमुख होए निहाली है इं कीमत पाई। जीवंदियां लाह मिले गुरकार कमावै, पूर्व होवे लिखिया तां सतगुर पावै। मनमुख तोटा नित है परमै परमाए, मनमुख अंध ना चेतई क्यों दर्शन पाए। ता जग आया जानिए लाच साचै लिवलावै, ता जग आया जानिए साचै लिवलाए। गुर पेटे पारस पए ज्योति ज्योत मिलाए। अहनिस रहै निरालमो कार तुर की करनी, नानक नाम संतोखिया राते हर चरणी। आसा महला पहला केता आखने आखी है, ताके अंत ना जाना। मैं नितरिया तर एक तू मैं तान सताना। नानक की अरदास है सच नाम सुहेला, आप गया सोजी पई गुर शब्दी मेला। रहाओ हाँ मैं गर्व गवाई है पाई है विचार, साहब से मन मान्या दे साचा धार। अहनिस नाम संतोखिया सेवा सच साई, ता कहो बिघन ना ला गई। चल हुक्मर जाई हुक्मर जाई, जो चले सो पवै खजान। खोटे ठवर ना पाए नी रले जूठान। नित नित खरा संभालिया सच सौदा पाई है, खोटे नजर नयाब नी ले अगन जलाई है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्मा सोई, एको अमृत बिरख है फले अमृत होई। अमृत फल जिनी चाखिया सच रहया गाई, तिन्ना परम ना भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदा रजाई, अवगुण यारे कौ गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा महला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जत भाणिया। जो लग जियो प्राण सच ते आई है, लाह हर गुण गाए मिले सुख पाई है। रहाओ सच्ची तेरी कार देह दयाल तू, हौ जीवा तुद सा लाहे मैं टेक्या धार। तू दर सेवक दरवान दर तू जानही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही। दरगै ना महदूर गुरमुख जानसी, वेला सच प्रवान शब्द पछाण सी। सत संतोख कर पाओ तोसा हर नाम से, मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे। सच्चे सच्चा ने हो सच्चे लाया, आपे करे ने आओ जो तिस पाया। सच्चे सच्ची दात देह दयाल है, तिसे भी दिन रात नामा मोल है। तू उत्तम हो नीच सेव कांडिया, नानक नजर करे हो मिले सच वांडिया। आसा महला पहला आवन जाना क्यों रह क्यों मेला होई। जनमरण का दुखण निसै साधोई, बिन नामे क्या जीवना फिट त्रिग चतराई। सतगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई। रहाओ
ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਤਉ ਰਹਿ ਪਾਈਏ ਗੁਰਪੂਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਰਾਸ ਦੇ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੋ ਮਿਲ ਰਹਿ ਧਨ ਧਨ ਜਸ ਗਾਏ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਏ ਨਟੂਐ ਸੰਗ ਬਣਾਇਆ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰਾ ਖਿਨ ਪਲ ਬਾਜੀ ਦੇਖੀਐ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾ ਹਉ ਮੈਂ ਚੌਪੜ ਖੇਲਣਾ ਝੂਠੇ ਅਹੰਕਾਰਾ ਸਭ ਜਗ ਹਾਰੈ ਸੋਜਣੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਉ ਅੰਦਲੈ ਹਰਥ ਟੋਹਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਟੇਕ ਹੈ ਨਿਸ ਦਉਤ ਸਵਾਰੈ ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹਾ ਹਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਅੰਤ ਸਖਾਈ ਪਾਇਆ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਮੇਟਿਆ ਜਪਨਾ ਮੁਰਾਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰਤਾਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਸਿਮਰਤ ਸਰ ਤੇਰਾ ਸੁਰ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਸਮਾਣੀ ਸਾਖਾ ਤੀਨ ਮੂਲ ਮਤ ਰਾਵੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰਵ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਜਪੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਹਾਓ ਤੇ ਤੀਸ ਕਰੋੜੀ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੀ ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਅੱਖ ਵਿਚਾਰੀ ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਤੇਰੇ ਯੁਗ ਹੀ ਅੰਤਰ ਚਾਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਪਤ ਪਾਈਐ ਕਥੇ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈ ਸਾਈ ਸਮਾਣੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋਈ ਲੇਤ ਹੈ ਜੇਤੀ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰੈ ਇਆਣੀ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਉ ਦੀਏ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਜੈ ਬੱਪੜਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰੀ

गुरमुख आखै गुरमुख बूजै गुरमुख को जानै हरारै रव रहया सब अंतर जेते किए जनता जनतो पाए तंदै सब लाए कर्म होवा तिन्ना मिलया लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना समकर सहना पाणै ताकै हुक्म पया ववै वास दियो परमेश्वर वेखण कहो जिन वेस किया वेखै चाखै सबके जाणै अंतर बाहर रव रहया अड़ाड़ै राड़ करै क्या प्राणी तुसै ते आवो जे अमर होवा तुसै ते आवो।

हरिय प्रीत हरिय सिंगार हवरस अर्पिय जह दुख सुनिया जम पंथ भणिया तै साध संग ना डरपिय कर कीर्त गोविंद गुणिया सगल प्रायश्चित दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर स्यो नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवै बरस सुहावे में हो। हर प्रीत करी जय हो मन दी जय तलाइय चित मुरारी मान की जय सरन परी जय दर्शन को बलिहारी। गुरसो प्रसन्ने मिलना विशुन्ने तन देंदी सह स्नेहा कहो नानक संत अनंत ठाकर के हर स्यो की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घणी कद नियर देखिया कोकल अंब प्रीत चवै सुहाविया। मन हर रंग कीजिए हर प्रीत करीज मान न दीजे एक राती के हब पाहुणिया आप क्या रंग लायो मोहर चायो नंगे अमन जावणिया। थिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूट समोह जो कीती है कहो नानक छन दयालपुर के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखिए। निस कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओडवै मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरन पतार उर्जी पर सिवै एह मन लाल दी जय मन लालै दी जय पोकरी जय हब खुशियां रंग माणे। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथिया साखी तां डिठमे आखी पर जेहा अवर ना दिसै कहो नानक छन दयाल मोहन के। मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवां सलोक बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जब हर पाया मन माहे संत। जा कहो खोजे असंख मुनिया नेक तपे ब्रह्मे कोटा राधे ज्ञानी जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा तीर्थ मज्जन मिलन कहो निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार संकट संकर जटा तार चाहे तुझे दयार मंतन रुचि अपार। अपार अगम गोबिंद ठाकर सगल पूरक प्रभतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावै जाह किन्नर गुण बणी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मेरे उधार। कोट देवी जा कहो सेवै लक्ष्मी अनक पांत गुप्त प्रगट जा कहो आराध पौन पानी दिन सरात। नखियत्र ससियर सूर त्यावै बसद गगना गावै सगल खाणी सगल बाणी सदा सदा त्यावै। सिमरत पुराण चतर बेद खड़ शास्त्र जाको जपात पदत पावन भगत वछल नानक मिलिया संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजंत जो सेवै तेती न जाए गनी। अवगत अगंत अथा ठाकर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचके एक दाता न दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी एहो दान मान नानक पाए शीस साधै धर चरणी। आसा महला पंजवां सलोक उद्यम कर हो वडभागी हो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवै दुख दर्द भ्रम जाए। संत नाम जपत गोबिंद न अलसाई है पेटत साधु संग जमपुर न जाई है। दुख दर्द ना पवे आपै नाम सिमरत सद सुखी सास सास आराध हर हर त्याय सो प्रभ मन मुखी। किरपाल दयाल और साल गुण निद कर दया सेवा लाई है नानक पयम पै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद न अलसाई है। पावन पतत पुनीत नाम निरंजना परमा देर विनाश ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जलथल महियल पूरिया एक निमख जाकर दै वसिया मिटे तसै विसूरिया।

नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर कने ना पायो, बिन सतगुर कने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नु कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला, हौं विच आया हौं विच गया, हौं में जमया हौं विच मुआ, हौं में दिता हौं विच लया, हौं विच खटिया हौं विच गया। हौं विच सचियार कूड़ियार, हौं च पाप पुन विचार, हौं विच नरक सुरग अवतार। हौं विच हसै हौं विच रोवै, हौं विच भरी है हौं विच धोवै, हौं में जाति जनसी खोवै। हौं विच मूर्ख हौं विच सियाणा, मोख मूत की सार ना जाना। हौं विच माया हौं में छाया, हौं मैं कर कर जन तो पाया। हौं मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिया लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। महला दूजा, हौं मैं हा जात है, हौं मैं कर्म कमाहे। हौं मैं एही बंदना फिर जोनी पाहे। हौं मैं किथों उपजै कित संजम एह जाए। हौं मैं एहो हुक्म है पया किरत फिर आहे। हौं मैं दीर्घ रोग है दारू पिए समाहे, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कह सुनो जन इत संजम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिनी सचो साहित्य आया। उन्नी मंदै पैर न रखियो कर सुकिरत तर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला नित देवै चढ़ै सवाया, वड्याई वड्डा पाया।

मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करै प्यार, धर्मी धर्म करै गावावै मंगै मुख द्वार, जति सदावै जुगत न जाणै छड बह करवार, सबको पूरा आपे होवै घटना कोई आखै, पथ परवाणा पिछै पाईऐ ता नानक तोलिया जापै, महला पहला वदी स्वजग नानका सच्चा वेखै सोए, सबनी छाला मारियां करता करे सोहे, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे, जिनकी लेखे पथ पवै चंगे से ही के पौड़ी, तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया, एना जनता कै वस किश नाही तुद वेकी जग तो पाया, एक नानो तू मेल लै एक आपो तुद खवाया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदया बुझाया, सहजे ही सच समाया। सलोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पाया, जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही, जा हो करी ना होई, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया, रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहेब सिफत सवाले हो, जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बातां, जो किश करना सो कर रहया, महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ, नानक ताका दास है सुई निरंजन दे ओ, महला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे ओ, नानक ताका दास है सोई निरंजन दे ओ, महला पहला कुंभे बद्दा जल रह जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रह गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार ता ओमी साधना मारी है, जिहा कहले कहलना ते वेहो ना उपचारी है, ऐसी कला ना खेडी है जित दरगे गया हारी है, पढ़िया अत ओमिया विचार अगै विचारी है, मोहे चले सो अगै मारी है। सलोक महला पहला, नानक मेरे शरीर का एक रथ वाह हो, जो जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझैता है, सत युग रथ संतोख का धर्म अगै रथवा हो, तेरे तै रथ जतै का जोर अगै रथवा हो, द्वापर रथ तपै का सत अगै रथवा हो, कल युग रथ अगन का कूड़ अगै रथवा हो, महला पहला साम कह से तंबर स्वामी सच में अच्छे साच रह सब।

जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भया पार जाद गोपी लै आया बिंद्रावन मैं रंग किया काल मैं बेदा थर बन हुआ नाव खुदाई अलहो भया नील बसर ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचिया।

नानक सेवक कांडी है, जे सेती खसम समाए पौड़ी, नानक अंत न जापनी, हर ताके पारा वार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरियां, एक तुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप, हों कैस्यों करी पुकार, नानक करना जिन किया फिर।

तिसका पाओ लै हृदय अंतर, चौह जुग ताड़ी लावै, सब जो गतन राम नाम है, जिसका पिंड पराना। कहो कबीर जे कृपा धारै, दे सच्चा निशाना, आसा हिंदू तुर्क कहां ते आए, किन ए राह चलाई, दिल में सोच विचार गवा दे, पिस्त दोजक किन पाई। काजी तै कवन कते बखानी, पड़त गुण त्यासे सब मारे, किन्हू खबर ना जानी रहाओ, सगत स्नेहो कर सुनत करिए, मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, अपन ही कट जाई। सुनत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार ना छोड़ै, ताते हिंदू ही रही है। शाड़क तेव राम भज बौरे, जुलम करत है भारी, कबीर है पगड़ी टेक राम की, तुर्क रह पछहारी। आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजै सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तुह करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ, कां की मात पिता कहो का को, कवन पुर की जोई, घट फूटे को बात ना पूछे, काडो काडो होई। देहोरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई, लठ छटकाए त्रिया रोवै, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, पैसा गर कहताई, इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एको अंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जियो के चौपदे एक तुके, सनक सनंद।

तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी मैं शब्द संजोई। हर का बिलोबना मन का बिचारा, गुरप्रसाद पावै अमृत धारा। कहो कबीर नदर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। आसा बाती सुकी तेल निखूटा, मंदल ना बाजै नट पै सूता। बुझ गई अगन नानक से धुआं, रव रहया एक अवर नहीं दुआ। रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब, भूल बिगारियो अपना काज। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावना।

हरा मैया हूं बार्क तेरा, काहे ना खंड से अवगन मेरा रहाओ। जे अत क्रोप करे करताया, ता पी चीत ना राख समाया। चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उत्तर सपारा। देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। आसा हज हमारी गोमती तीर, जहां बसै पीतंबर पीर। वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन पावता है। रहाओ नारद सारद करै खवासी, पास बैठी बीबी कबला दासी। कंठे माला जेवा राम, सहंस नाम लै लै करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दऊ समझावो। आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो। जिस पाहन कौ पाती तोरै, सो पाहन निर्जियो। पूली मालनी है ओ, सतगुर जागता है देओ रहाओ। ब्रह्म पाती बिसंडारी, फूल शंकर देओ। तीन देव प्रतख तोरै, करै किसकी सेओ। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, देकै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है, तौ गण नहारे खाओ। पात पहत अर लापसी, कर करा का सार। भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखसार। मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। आसा बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कछ तप ना कियो। तीस बरस कछ देवन पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलियो रहाओ। सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथ वार करै। आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुक्त फिरै। चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीरिया सार बह। जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करै। हर जियो कृपा करै लिव लावै, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलद्या नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुऐ लै ना गयो। आई तरब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलियो। आसा काहू दीने पाठ पटंबर, काहू पलंग निवारा। काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। अहे रखवाद ना कीजै रे मन, सो किरत कर ली।

आओ बजाम नहारो कहां गयो जने हो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिगल पाए संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता थाके पंच दूत सब तस कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत धर रमते मृतक पय दसै बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी ते उपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभुवन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा एह सरपनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुरप्रसाद सही तरे कबीरा आसा कहां स्वान कौ सिमरत सुनाए कहां सागत पै हर गुण गाए

ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पायो, अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए, कोट ते तीसियो जाना, कह कबीर मोए ब्याह चले है, पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी, ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डराओ रे, सखी सहेली ननद गहेली, देवर कै ब्रह जराओ रे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे, ओ किन बिद रहन रहो रे, सेजा रम तो नैन नहीं पेखो, एहो दुख का सौ कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई, माया सदमतवारी, बड़े भाई कै जब संग होती, तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। आसा हम कर सूत, तने नित ताना, कंठ जने उत मारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे, मेरी जेहबा बिसन नैन।

हम गोरु तुम ग्वार गोसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का

कृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी, सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पै राम प्रसादा, आसा रोजा तरह मनावे अल्लाह, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देखे, काहे को चख मार है, काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देखे, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेखे रहाओ, साज कते बखाने अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी, हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

बहुरिया आराम बड़े मैं तनक लहुरिया रहाओ तन पर एक संग बसेरा सेज एक पै मिलन दुहेरा तन सुहागन जो पी पावै कह कबीर फिर जन्म न आवै आसा श्री कबीर जियो के दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हीरा हीरा बेद पवन मानो सहजे रहा समाई सगल जोत इन हीरे बेदी सतगुर बचनी मैं पाई हर की कथा अनाहत बानी हंस होए हीरा ले पशानी रहाओ कहे कबीर हीरा अस देखियो जग मैं रहा समाई गुप्ता हीरा प्रगट पायो जब गुरगम दिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात को लखनी साहुरे पे ये बुरी अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवाओ मेरी अब की तरी रहाओ कहो कबीर जब लहुरी आई बड़ी का सुहाग टर्यो लहुरी संग पहिया मेरा जेठी और तर्यो आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले रखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवे राम रमुआ लावा रहाओ कहत कबीर सुनो मेरी माई इन मुंडियन मेरी जात गवाई आसा रहो रहो री बहुरिया कुंगट जिन काढ़े

नित नित मेंढकन आवै, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवै। मनो कठोर मरै बानारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हाड़म्बै, तां सगली सैन तराई। दिन सनारैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसै निरंकारा। कह कबीर नर्त सहते आवो, बावरिया संसारा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा बाणी श्री नाम देव जी की। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। माया चित्र विचित्र बिमोहत, बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मान सत सहंस, जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अर फेन बुदबुदा, जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ, सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी, जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ, भराई ले उदक। ठाकर कौ स्नान करो, बयालीस लख जी जल मैं होते। बीठर पहला काय करो, जतर जाओ।

आनीले दूध रिदाईले खीरंग। ठाकर कौ नैवेद करो, पहले दूध बिटा रहे हो बछरा है, बीठल पहला काय करो। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती। मप मप काटो जम की फासी। कहा करो जाति, कह करो पाती। राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। रंग नरंगो सीमन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो। भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो रागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कौ की जय ध्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीन सी, आसा ते ना भावसी। रामा भगत चेती अले अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरै गारे, संसार सागर बिखै को बना। झूठी माया देख कै भूला रे मना रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुरु उपदेश पहला। संता कै प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन प्रेंग पतंग कुंचर, एक दोख बिनास। पंच दोखया साध जा मैं, ताकि केत कयास। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच। मानुखा अवतार दुर्लभ, तिही संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए। काल फासा बद लागे, कशना चलाए उपाय। रविदास दास उदास तज भ्रम, तपन तप गुर ज्ञान। भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने। संत देवा देव, संत ची संगत, संत कथा रस। संत प्रेम माजै, दीजै देवा देव रहाओ। संत आचरण, संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगणी। और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी सण। रविदास भण जो जाने सो जान, संता नंत यंत्र नाही। आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते उच पय है, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मुखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधव, जैसे मदप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। आसा कहां पयो, जो तन पयो छिन छन। प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन, तुझे चरण अरबिंद पवन मन। पान करत पायो, पायो रामैया तानो रहाओ। संपत विपत पटल माया तानो, ता मैं मगन होत ना तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन, कह रविदास छूट बो कमन गुण। आसा हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागर, जन्म जन्म के काटे कागर।
ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਇਆ, ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤ।

देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है रहाओ। जब कश पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोबन लगता है। मान बच करामो रस कसै लुभाना, बिरस गया जाय कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजी गर स्यो मोहे प्रीत बनियाई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे। लालच बिख काम लुब्ध राता, मन बिसरे प्रभीरे रहाओ। बेख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया। गुण ते प्रीत बड़ी अनपाती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जल जम फंद परे। बेख फल संच भरे मन ऐसे, परम पुरख ब्रह्मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरै धन दिया, ध्यान मान मन एक मए। प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्ता गाने मुक्त पए। जोत समाए समानी जाके, अछली प्रपै जानिया। धन है तर पाया तरनी तर, मिल जा संत समानिया। महला पंजवा गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग, नाम देओ मन लीना। आड़ दाम कोशी परो, होयो लाखीना रहाओ। बुनना तनना त्याग कै, प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जोला हरा, पयो गुनी गहीरा। रविदास टोवंता टोर नीत, तिन त्यागी माया। प्रगट होवा साध संग, हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया, ओहो कर कर सुनिया। हिरदे वसिया पार ब्रह्म, भगता मैं गनिया। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੈ ਜੱਟ ਰੋ, ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਤੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ, ਨਾ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ। ਬਿਬੈ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ, ਜੇ ਧਾਵੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਕਉ। ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਰਹਾਉ। जननी केरे उदर उदुक मह, पिंड किया दस द्वारा। दे आहार अग्न में राख, ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर, समय देख मन माही। पाखण कीट

आसा सेख फरीद जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीय रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से तिन तन जने दी माओ आए सफल से पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुमा पैर मूह तेरी परै खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाई है घुम ना आई है झूठी दुनिया लग ना आप वजाई है बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसै वाट मुरीदा जोलिए शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख है आती जग ना कोई थिर रहा जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो गंडे दिया छे मां तुड़न दिया हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जे रल कट अंतर पूजा होए पूजा कीचै नाम ते आई है बिन नावे पूजना होए रहाओ बाहर देव पखाली है जे मन तो वै कोए झूठ लह जियो मन जी है मोख पयाना होए पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत देह नाम विहुने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले जो देवे सोखा बना कहो नानक साचा है गुजरी महला पहला नाब कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पड़े मुख कंठ सवार ताको अंतना जाई लखना आवत जात रह गोबार प्रीतम क्यों बिसर मेरे प्राण आधार जाकी भगत करे जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ राव सस दीपक जाके तिर पवन एका ज्योत मुरार गुरमुख होए सो अहिंस निर्मल मन मुख रैण आधार सिद्ध समाद करे नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नवेरै सुर नर नाथ बेअंत जोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर सेती चित गह रहे जरा का पौ ना हो वही जीवन पदवी पाए रहाओ
गोबिंद प्रीत सियों एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल होवा ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई है जे लोचै सब कोय कूड़े की पाल विचों निकले ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आग्या जियो धरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोय जी हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी हर मेरी प्रीत रीत है हर मेरी कथा कहानी जी गुरप्रसाद मेरा मन पीजै एहा सेव बनी जियो रहाओ हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंधप हर मेरा पाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साक अंत होए सखाई हर बिन होर रास कूड़ी है चलद्या नाल ना जाई हर मेरा तन मेरा साथ चल है जहां हो जाऊं तह जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई कह नानक हर का पाणा होवा कहना कछु ना जाई गुजरी महला तीजा जुग माहे ना

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभाई। जित कारे काम हम हर लाए, सो हम करे जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता का रिजका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़े उड़िया वैसा कोसा। तिस पाछे बचरे शरिया, उन कमन खलावे कमन चुगावे। मन में स्मरण करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइए। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करे खटकर्मा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरे हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी। रहाओ शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त न को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। आठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। धावत धावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसरो मन ते हर हर सा।

हर तन इशनान, हर तन ज्ञान, हर संग लाए ते अन्ना, हर तन तुलहा, हर तन बेड़ी, हर हर तार प्राणा, हर तन मेरी चिंत विसारी, हर तन लाया धोखा।

सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनद अनंता, रंग तमासा पूर्ण आसा, कबह ना व्यापै चिंता, पवर तुम्हारा इहो मन होवो, हर चरणा हो कौला, नानक दास उन संग लपटायो, ज्यो बूंदे चात्रक मौला, गुजरी महला पंजवा, मता करे पछम कै ताई, पूर्व ही लै जात, खिन मैं थापो थापनहारा, अपन हाथ मतात, स्यानप काहू कामनायात, जो अनरूपयो ठाकर मेरा, होए रही हो बात रहाओ, देश कमावनो तन जोरन की, मनसा बीचे निकसे सास, लस्कर नेव खवास सब त्यागे, जंपर उठ सिदास, होया नान मन हठ की दृढ़ता, आपस कौ जानात, जो अनिंद निंद कर छोड़ियो, सोई फिर खात, सह सुभाए पय कृपाला, ते जनकी काटी फास, कहो नानक गुर पूरा भेटिया, प्रवान ग्रस्त उदास, गुजरी महला पंजवा, नाम निधान जिन जन जपयो, तिनके बंधन काटे, काम क्रोध माया बिख ममता, ए ब्याह ते हाटे, हर जस साध संग मिल गायो, गुर प्रसाद पयो मन निर्मल, सर्व सुखा सुख पायो रहाओ, जो किश कियो सोई पल माने, ऐसी भगत कमानी, मित्र सत्र सब एक समाने, जो जुगत निशानी, पूर्ण पूर रहो सर्व थाई, आन नकत हूं जाता, घट घट अंतर सर्व निरंतर, रंग रवयो रंग राता, पय कृपाल दयाल गोपाला, ता निरपै कह कर आया, काल कलेश मिटे खिन भीतर, नानक सहि समाया, गुजरी महला पंजवा, जिस मानुख पै करो बेनती, सो अपने दुख भरिया, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, तिन पौ सागर तरिया, गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटै, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस घटै रहाओ, माया के संबंध सहन साक, कित ही काम न आया, हर का दास नीच कुल उच्चा, ते संगमन वाइत फल पाया, लाख कोट बिखिया के बिंजन, ता मैं त्रिशन ना बुझी, सिमरत नाम कोट उजियारा, बस्ता गोचर सूजी, फिरत फिरत तुमरे द्वार आया, पै पंजन हर राया, साध के चरण तूर जन बांछ, सुख नानक हो पाया, गुजरी महला पंजवा, पंच पदा कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कै वासा, ऊहा छोड़ तरन मैं आया, चित्र साल सुंदर बाग मंदर, संग न कछू जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुर पूरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त फबी रहाओ, इष्टमीत बंद पसुत पाई, संग बंता रच हसया, जब अंति अवसर आए बनयो है, उन पेखत ही काल ग्रसया, कर कर अनर्थ बिहाजी संपै, सोइना रूपा दामा, पहाड़ी को ओह पहाड़ा मिलया, होर सगल पयो बेराना, हैवर गैवर रथ संबाहे, गहो कर कीने मेरे, जब ते होई लामी ताई, चले नाही एक पैरे, नाम तानो नाम सुख राजा, नाम कुटम सहाई, नाम संपत गुरु नानक कौ दी, ओह मरे ना आवै जाई, गुजरी महला पंजवा, ते पदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख।

सास सास तेरा नाम सुमारा तुम ही को प्रव्याही, नानक टेक पई करते की होरे आस बेडानी लाही। गुजरी महला पंजवा, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर, केस संग दास पगचारो एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हर रस न्यारा दो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर, बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो उदर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा, ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए, साध संगत को जोहे ना सकै, मल मल धोवे पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रहे, मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर, रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करता, जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा, अब जस मिटै होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाई है, जम की त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंध सेती कर जाई है। जाते काल न बिरथी जाइए, आठ पहर सिमरो प्रभ अपना, मंत्र सदा त्याइए रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन, तू देह सोई प्रभ पाइए, चरण कमल नानक रंग राते, हर दास पैज रखाइए। गुजरी महला पंजवा, विश्वंपर जियन को दाता, भगत परे भंडार, जाकी सेवा निफल ना होवत, खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जाको वारा दे, ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभ प्राण आधार, हुए सहाय जिस तू रखै, तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा, जन की पै सवारी आप, हर हर नाम दियो गुरे अवखद, उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेसर, अपनी कृपा तार, मिटी ब्याद सर्व सुख होए, हर गुण सदा विचार। अंगीकार कियो मेरे करता।

जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण। गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग। मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ। आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटी है जमजाल। काम क्रोध लो मो मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन। मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हरजन संत। सर्ब बिद भ्रम ते पुकार कत नाही छोट हर चरण सरण अपार प्रभ के दृढ़ गही नानके ओट। गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आराध श्री धर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमण श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरण अरबिंद उपास काल कलेस मिटंत सिमरन काड जम दूत फास रहाओ। सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुवाओ। गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राए जाहे कलेस मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए। गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरनी वड़े भाग लिव लागी कवल प्रगास पाए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पहरो हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरह संगत सब उदरै बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ सरन परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावै। चेताओ बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ। उर्द मूल जिस साख्त लाहा चार बेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर अंगन मेरा पुहप पत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभू छोड़ो बो जंजाला। सुन सिखवंते नानक बिनवै छोड़ो माया जाला मन विचार एक लिव लागी। पुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कथियाले सो वै जे जाने रोगी। तिस कारण कामना तंदा नाही तंदे गिरही जोगी। काम क्रोध अहंकार तजियाले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत ते आया गुर प्रसादी पाया। ज्ञान ध्यान सब दात कथियाले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधं जगत नाही सूता। महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः नागरम बेखतज अमृत पी आया। गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभ दाते ताके अंतना परै सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरासा देवनहार। ऐ जी जप तप संयम सच आधार हर हर नाम देह सुख पाई है तेरी भगत परे पंडार रहाओ। सुन समाद रह लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल धरण गगन तह नाही आपे आप किया करतार। ना तद माया मग ना छाया ना सूरज चंद ना जोत्या पार
ਸਰਬ ਲੋਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਚਨ ਅਭਿਯੰਤਰ ਏਕਾ ਨਜ਼ਰ

तुद त्यायन बेद कते बासन खड़े गणती गणी ना जाए तेरा दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर बिशन अवतार हर जस मुख पाना पीर पैगंबर शेख मसाए के औलिए ओतपोत निरंकार कड़कड़ मौलिए कूड़ो करे विनाश धर्मे तगी है जित जित लाहे आप तित तित लगी है। श्लोक महला पंजवा चंगयाई आलक करे बुरियाई होए सेर नानक अजकल आपसी गफल फाही पेर। महला पंजवा कितिया कुटंग गुजा थी है ना हित नानक तैसे टकिया मन में सच्चा मित पौड़ी हाँ मांग।

तोरे, बिसम भय बिसम आद देह कुदर तेरिया, शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया। तेरे हथ निदान पावे तिस देहे, जिसन होए दयालु हर नाम से लेहे। आगम्या गोचर ब्यंत अंत ना पाईए, जिसनो होहे कृपाल सो नाम त्याईए। सुरुक महला पंजवा, कड़शिया फिरन सुआव न जान सुनिया, सेई मुख दिसानो नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा, खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़, तै सह दित्ती वाड़, नानक खेत न छिजई पौड़ी। आराध्य हो सच्चा सोए सब किश जिस पास, दुहा सरियां खसम आप खिन मैं करे रास। त्यागो सगलियो पाप तिसकी ओट गहो, पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो। कर्म धर्म तत् ज्ञान संता संग होए, जपिया अमृत नाम बिघन लगे कोए। जिसनो आप दयालु तिस मन उठिया, पाईन सब निधान साहेब तुठिया। सलोक महला पंजवा, लदम लबन हार कर्म करन दो मां पिरी, इको सृजन हार नानक ब्या ना पसीय। महला पंजवा, पापड़िया पाशाड़ बाण सचावा सन कै, गुरमंत्रा चितार नानक दुख ना थी वई पौड़ी। वाह वाह सृजन हार पाईन ठांड आप, जी जंत मेहरवान तिसनो सदा जाप। दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप, नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप। कीतियां ने अपनी रख गरीब निवाई थाप, आपे लयन छड़ाए बंधन सगल काप। तिसन बुझी आस पुनी मन संतोख त्राप, वड्डी हूं वड्डा पार खसम जिसले अपना पुन पाप। सलोक महला पंजवा, जा कौ पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात। नानक प्रीत लगी तन राम सियों, पेटत साध संगात। महला पंजवा, राम रमो वडभागी हो जल थल मैयल सोए, नानक नाम आराध्य बिघन न लागे कोए पौड़ी। भगता का बोलिया प्रवान है, दरगह पवे थाए भगता तेरी टेक रते सच नाए। जिसनो होए कृपाल जिसका दुख जाए, भगत तेरे दयाल ओना मेहर पाए। दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए, भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए। सदा सदा दिन रहन इको एक त्याए, पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। सलोक महला पंजवा, कोट बिघन तिस लागते।

जो तेरा रंग रते से जोनना जोवना अंतर बाहर एक नैणा लोवना जिनी पछाता हुक्म तन कदे ना रोवना नाव नानक बख्शीस मन माहे प्रोवना। श्लोक महला पंजवा जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रल लंदड़ो खाक नानक दुनिया संग उदारिया सागत मूड नपाक। महला पंजवा जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग जन पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी आदि जुगादी आप रखण वाले सच नाम करतार सच पसारिया। ऊना कही ना होए कटे कटसारिया मेहरवान समरथ आपे ही कालिया जिन मन उठाया आप से सदा सुखा लिया आपे रचन रचाए आपे ही पालिया सब किसे आपे आप बेअंत अपारिया गुरपुरे की टेक नानक संभालिया। श्लोक महला पंजवा आद मध्य अरयंत परमेश्वर रखिया सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया सादा संग अपार अंदन हर गुण रवै पाए मनोरथ सब जोनी नह पवै सब किश करते हथ करण जो करै नानक मंगै दान संता तूर तरै। महला पंजवा तिसनो मन वसाए जिन उपाया जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्म बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस होवा आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै।

प्रभदास का दुख ना खप सकै, फड़ जोनी जुते मथे वाल पछाड़िया नू जा मार्ग मुते, दुख लगै बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखिया नू नानक हर सते। श्लोक महला पंजवां। राम जपो वड भागी हो, जल थल पूर्ण सोए, नानक नाम ते आया बिघन लागै कोए। महला पंजवां। कोट बिघन तिस लागते, जिसनों विसरै नाओ, नानक अन दिन बिलपते, ज्यो सुनै कर काओ। पौड़ी। सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया, इच्छ पुन्नी मन आस गए विसूरिया, पाया नाम निदान जिसनों पालदा, जोत मिली संग जोत रहया कालदा, सुख सहज आनंद उठे तित कर, आवन जान रहे जन्म ना तहां मर। साहेब एवक साहेब सेवक एक एक दृष्टाया, गुरप्रसाद नानक सच समाया, सुध राग गुजरी भगता की बाणी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद। श्री कबीर जी ओका चौपदा कर दूजा, दूजा चार पाव दोए सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है, उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूंड लुकई है, हर बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नकन टूटे कंधन, कोदव को पुस खई है, रहाओ सारो दिन डोलत बन महिया, अजहो ना पेट अगई है, जन भगतन को कहो ना मानो, कियो अपनो पई है, दुख सुख करत महाप्रम बूडो, अनक जोन परमई है, रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरियो, एहो अवसर कत पई है, प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो, गत बिन रहन बिहई है, कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा,

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रगराई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जौ भीख मंगावै ता क्या घट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै सह बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हों पूजो दूजा नजर न आई। एक है पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कह नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछ पार मलो, परम लियो बैठो री आई। आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कह किन बूझी है, रमैया या कुलरी बाई। रहाओ ज्यों आकाश है पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यों जल माझ है मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यों आकाश है कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनतीने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछर थनो बिटारियो, फूल पवर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिख अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोच

काहे भया सन्यासी परमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत नाम पाया। काय जपोरे काय तपोरे काय बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडल कापड़ी आरे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर।

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमं सत आद भावरतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पावभूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार शरणं हर भगत निज नेह केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवभूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख पाग सपागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभु।

ठाकर प्रभ तुमरी तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हों तिस बरिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिलै जूठारी। हमरे जिए होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़े आरी। हमरी मुंदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण द्वारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकटी, जो बेसवा के घर पूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रगटी रहाओ। जिनके हृदय नाहे हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरगटी। ज्यो निगुरा बहु बाता जाने, ओहो हर दरगह है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकटी। नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सत गुर पाछै शुकटी। शक्का एक देव गंधारी महला पंजवां, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुरचरणी चित लाइयै, प्रभ होए कृपाल कमर पर गासे। सदा सदा हर त्याई रहाओ, अंतर एको बाहर एको, समय एक समाई है। घट अवकट रविया सब ठाई, हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है। उस्त कर है सेवक मुन केते, तेरा यंत्र कतहू पाई है। सुखदाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सतबल जाई है। देव गंधारी माई होन हार सो होई है, राच रहे ओ रचना प्रभ अपनी। कहां लाभ कहां खोई है रहाओ, कह फूले आनंद बिखे सोग। कब हसनो कब रोई है, कब हूं मैल भरे अभिमानी। कब साधु संगत होई है, कोई न मिटे प्रभ का किया, दूसर नाही अलोई है। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जे प्रसाद सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत, मेर तेर तजो अभमाना। शरण स्वामी की परत रहाओ, जो जो कह सोई पल मानो। नाहिन का बोल करत, निमख ना बिसरो ही ए मोरे ते। बिसरत जाई हो मरत, सुखदाई पूर्ण प्रभ करता। मेरी बहुत अयान पजरत, निर्गुण कुरूप कुलीन नानक हौ। आनंद रूप स्वामी भरत, देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं। गावत सुनत जब तो उधार है, बरन्या बरना सब हूं रहाओ। जहते उपजो तही समान्यो, जहते उपजो तही समायो। एह बिद जानी तब हूं, जहां जहां एह देही धारी। रहना पायो कब हूं, सुख आयो पै परम बिनासे। कृपाल हुए प्रभ जब हूं, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। सा संग तज लभ हूं, देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो। नीचो नीच नीच वत नाना, होए गरीब बुलावो रहाओ। अन के अडंबर माया के बरथे, तासो प्रीत कटावो। ज्यो अपनो स्वामी सुख मानै, ता मैं शोभा पावो। दासन दास रेण दासन की, जन की टैल कमावो। सर्व सुख वडियाई नानक, जीवो मुखो बुलावो। देव गंधारी प्रभ जी तौ प्रसाद भ्रम डारियो, तुमरी कृपा ते सबको अपना। मन में यह बिचारियो रहाओ, कोट प्राद मिटे तेरी सेवा। दर्शन दुख उतारियो, नाम जपत महा सुख पायो। चिंता रोग बिदारियो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा। साधु संग बिसारियो, माया बंद काटे कृपा निध। नानक आप उधारियो, देव गंधारी
ਮਨ ਸਗਲ ਸਿਆਨ ਪਰਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕੇ ਉਲਟ ਗਹੀ ਰਹਾਉ ਆਪ ਮੇਟ ਪਏ ਸਰਨਾਈ ਇਹ ਮਤ ਸਾਧੂ ਕਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਲਹੀ ਜਾਨ ਪਰਬੀਨ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਅਹੀ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਥਪ ਨਹਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਮਨਾ ਪਹੀ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਹੂ ਜਾਤੇ ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਤੇ ਰੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਲਾਲ ਪਏ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ਮਹਾ ਕਿਰਵਖ ਕੋਟ ਦੋਖ ਰੋਗਾ ਪ੍ਰਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੁਹਾਰੀ ਹਾਤੇ ਸੋਵਤ ਜਾਗ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ।

साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जा रहो सब ते नीच आत्म कर्मानो मन में उत्सुकता रहो। गुण गावे ठाकरे अबनासी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए और तारो देवगदारी महला पंजवा प्रभ जीओ पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर ध्यान धार दर रैनी जी प्रांते प्यारा रहाओ। शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत् विचारा दीनानाथ प्राण पथ पूर्ण पावजल उदर नहारा आद जुगाद भगत जन सेवक ताकी बिखै आधारा तिन जन की धूर बांछै नित नानक परमेश्वर देव नहारा।

प्रेम रसाने जा को उपजी छोड़ना कतहूं जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजिया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधियो बोझो नी परमाई है टिकट ना पावे बिन सतसंगत किसे आगे जाई रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन भीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया। कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया पारि उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ

तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवां प्रभ एह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेरा रहाओ। प्रातः काल लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पावो तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिए एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लइए। राग देव गंधारी महला पंजवां कर तीजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सधी संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना समसर लाए। मंदर भाग शोभ द्वार अनहद रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवां दर्शन नाम कौ मन आचै प्रम आयो है सगल थान रे आहे पर्यो संत पाछै रहाओ। किस हों सेवी किस आराधी जो दिष्ट सो गाचै साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बांचै। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छै आए पयो नानक गुरचरणी तो उतरी सगल दुरा छै। देव गंधारी पंजवां अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे सबहु मद निरारे रहाओ। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवां हर जप सेवक पारे उतारियो दीन दयाल पए प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया कुलै समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवां कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार रहाओ कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार कहो नानक तिन भव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवां कर पंजवां एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी उचा मोहन सब ते उचा आना

रीते परे परे सख नावै जै ता को व्यवहारे अपनी माया आप सारी आपै देखन हारा नाना रूप तरे बहुरंगी सब ते रहै न्यारा अगंत अपार अलख निरंजन जेह सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहे चितलायो राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम ध्याई है मेरी जिंदड़िए गुरमुख नामिया मोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम चकोले राम गुरमत मन ठहराई है मेरी जिंदड़िए अंत ना काहूं डोले राम मन चिंदियाड़ा फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठड़ा मेरी जिंदड़िए मुख अमृत बहण लाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए मन सुनिया हर लिव लाए राम चिरी विछुन्ना हर प्रभ पाया गल मिलिया सह सुभाए राम जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए अनहद शब्द बजाए राम सखी सहेली मेरी आ मेरी जिंदड़िए कोई हर प्रभ आन मिलावे राम हम मन तन देवो तिस अपना मेरी जिंदड़िए हर प्रभ की हर कथा सुनावे राम गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए मन चिंदियाड़ा फल पावे राम नानक भज हर शरणागति मेरी जिंदड़िए वडभागी नाम ते आवे राम कर किरपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए गुरमत नाम प्रगासे राम हाँ हर बाज उडीनिया मेरी जिंदड़िए ज्यो जल बिन कमले उदासे राम गुरपुरै मेलाया मेरी जिंदड़िए हर सज्जन हर प्रपासे राम तन तन गुरु हर दस्या मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम बिगासे राम राग बिहागड़ा महला चौथा अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़िए अमृत गुरमत पाए राम हमें माया बिख है मेरी जिंदड़िए हर अमृत बिख लै जाए राम मन सुक्का हरिया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम ते आए राम हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए ज्यो बालक लग दुध खीरे राम हर बिन सांतना पाईए मेरी जिंदड़िए ज्यो चात्रक जल बिन टेरे राम सतगुर सरणी जाए पाओ मेरी जिंदड़िए गुण

ता एक जन एक मन राम कै रंग मातिया लग संत चरणी पड़े सरणी मंत ना ओ महा बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै सही सच्चे सहा।

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मनसा ते आई मिलिया पुरखिया पारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एको ओंकार सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रह निड़िए प्रे प्रेम लगा कर दुख नींदड़िए परसौ सदा पगा पग तूर बांछो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रेरंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक तार कृपा रहो चरण संग लगा मेरी सखी सहेलड़ियो प्रभ कै चरण लगे मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगे हर भगत पाई प्रभ ते आईए जाए मिलिए हर जना मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना बड़ पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रभ प्रीत हर हर मिल पगे बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे सब रंग माणे रांड ना बैसई प्रभ पुरख चराणे न दुख पावे प्रभ ते आवे तन ते वटपागिया सुख सहज सोवे किल बिख खोवे नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रे बचन मीठे पाने बिनवंत नानक मन छपाई हर मिले पुरख चराणे तित ग्रह सोहलड़े कोड़ नंदा मन तन रव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री तर गोविंद भक्त उदारणो प्रभ कृपा तारी हर मुरारी पै सिंध सागर तारणो जो सरन आवै तिस कंठ लावै एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा बिहागड़ा महला पंजवा हर चरण सरोवण तै करो निवास मना कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे जन्म मरण ना होए तिस कौ कट्टै जमके फासे मिल साध संगे नाम रंगे तहा पूर्ण आसो बिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावै संत जना प्रभ का जय करो राम मिल संत गावै खसम पावै हर प्रेम रस रंग पिनिया हर लाभ पाया आप मिटाया मिले चिरी विछुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम्या पारो बिनवंत नानक सदा निर्मलो सच शब्द रुण चुनकारो सुन वट भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जसिया प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नामुआ कल कले साधुख हरे हर शरण पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मंतन पाणी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किश कहन ना जाई राम जिसते उपजाड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल महियल एक रविया न दूजा दृष्टाया बन त्रैण त्रिपावन पूर पूर्ण कीमत कहन ना जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरै प्रभ प्राण आधारो राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाए लीजिए देह नाम अपना जपो स्वामी हर दर्श पे खे जीजिए
समर्थ पूर्ण सदा निहचल ऊचक में अपारे बिनवंत नानक तार कृपा मिलाओ प्राण प्यारे। जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरनाराम तप्त नाकत बुझै बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना नानक चात्रक हर बूंद मांगे जप जीवा हर हर चरना अमै सरोवर पियो अमै सरोवरो पियो हर हर नामा राम संतै संग मिले जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण हर निमुख मनो ना बिसरे आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीसर। अगणत ऊच अपार ठाकर अगम जाको धामा बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकि महिमा कित गना हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोता वहे गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदों से दे आवे। तार वार विशुन्ने ने पाप जुड़ते जाम्बा गौने अकेली बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूप करे सब जाने जानी राम लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभानी बीच ना कोय करे अकिरत कान विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया तपत थम गल लातिया। काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पहिता पिया बिनवंत नानक संजोग भूला। हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला। अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा। बिनवंत नानक कर दे राखो गोविंद दीन दयारा। सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइए भज साध संगे मिले रंगे बहुत जोन ना ताइए। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया बिनवंत नानक आप मिलिया बहुत कतू ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना।
सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे तू समरथ सदा हम दीन पेखारी राम माया मोहे मगन कड लिहो मुरारी राम लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावने कार्य अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम आगाध बोधिया पार करते मोहे नीच कछु ना जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी नानक सरण समरथ स्वामी पैज रखो मोरी जा ते विछड़िया तिन्हिया मिलाया राम साधु संग में हर गुण गाया राम गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण में प्रगट पए सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया बिहागड़ा महला पंजवा शंत बोल सो तरमीड़िया मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया माया ब्योहारी राम संग तेरा कश ना चल बिना गोविंद नामा देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी राजन क्यों सोया तू नींद परे जागत कत नाही राम माया झूठ रुदन केते बिललाही राम बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कटकट आही बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम सर पर विछड़ना मोहे पछताने राम हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है हां हां करत ना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने बिनवंत नानक बिन नाम हर के केतिया पछताने तार अनुग्रह अपना कर लीना राम पूजा गह काढ लियो साधु संग दीना राम साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले महा धर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले रसना अराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्ब गुण परबीना। बिहागड़े की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला तीजा गुरसेवा ते सुख पाई है होर थे सुख ना पाल गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल नानक नाम तिन्ना कौ मिलै जिन हर वेखै नजर निहाल महला तीजा सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए नानक मनमुख जगत तनहीन है अगै भुखा के खाए पौड़ी सब तेरी

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाह हो हर सब नाते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जगजीता, जगजीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है सहजे होए सो होए, गुरमत मत अचल है।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध, महला चौथा। अंधे चानण तां थीऐ जां सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक सरण करतार की करता रखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदो क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्द उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदर रह सदा गुण गाए, विण कर मैं किने ना पायो, भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए, नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप पीजै, आपे ही बै पूजे करता, आप पर पंच करी जै। आप निर्विरत आप निर्विरति, आपे कथ कथी जै। आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वर्ती जै, आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जै। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड तू, पाओ कर चल गवाए। गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपाओ पाए, मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावणी, सा खसम पाए थाए, नानक काम क्रोध किने ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मन मुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार, कूड कमावे कूड संग्रह, कूड करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार, कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मन मुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगै होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर भंड करे, आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे, आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा, सदगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचिंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटिया, हमे ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रहे समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा, नाम रत्ता सतगुरु है, कलयुग बोध होए, गुरमुख होवै सो पार परै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है।

आपे सबकट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप बेको आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सालाहे नर जय तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कुमाहे बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही मर जमै आवै जाहे बिन सतगुर सेवे फिका बोलना नाम ना वसै मन आए नानक बिन सतगुर सेवे जंपुर बदे मारी है मोहे काल उठ जाए। महला तीजा एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी हर नामे लगे प्यार नानक जन्म सवार ने अपना कुल का करन उधार। पौड़ी आपे चाड़ साल आप है पादा आपे चाटड़े पण कौवाने आपे मिता आपे पिता माता है आपे आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझे सब आपे एक थै आपे करे आने एक ना अंदर महल बुलाए जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई से जन सच्ची दरगे जाने। श्लोक मर्दाना पहला कल कल वाली काम मद मनुआ पीवन हार क्रोध कटोरी।

नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सत जीवन होए पौड़ी। जाय आप किरपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाम हर आप जपावे। आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे। अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगतां की पैरी पावे। धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ न आवे। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा होर केती चख चख आवे जावे। श्लोक महला तीजा। राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए। आगमा गोचर अत उड़ा अतुल ना तुलिया जाए। कीमत कने ना पाईया कितना लिया जाए। गुर कै शब्द भेदया इन विद वसिया मन आए। नानक आप अमेव है गुर कृपा ते रहा समाए। आपे मिलिया मिल रहा आपे मिलिया आए। महला तीजा। ए मन एहो तन नाम है जित सदा सदा सुख होए। तोटा मूल ना हो वही तोटा मूल ना हो वही हानत कदे ना होए। नानक गुरमुख पाई है जा कौ नदर करे पौड़ी। आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वरतदा आपे ही जाहर। जुग छत्ती गुबार कर वरतिया सुन्ना हर ओथे वेद पुराण ना सास्ता आपे हर नर हर। बैठा ताड़ी लाए

युनि स पंगुर प्रसाद राग वढ़ंस महला पहला कर पहला अमली अमल ना अंबड़ मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब कोए हाँ वारी वन्या खनिए वन्या तो साहेब के नामे रहाओ साहेब सफलियो रुखड़ा अमृत जा का नाओ जिन पिया ते तृप्त पए हों तिन बरहार जाओ मैं की नजर ना आवही वसै हबियां नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर पीतर पाल नानक तेरा बाणिया तू साहेब मैं रास मन ते तोखा तां लह जा सिफत करी अरदास वढ़ंस महला पहला गुणवंती सहोरावया निर्गुण कूके काए जे गुणवंती थी रहे तां भी सहोरावन जाए मेरा कंतरी सालू की तन्यवरा रावे जी रहाओ करनी कामन जे थी है जे मन तागा होए मानक मुल ना पाई है लीजे चित परोए राहो दसाई ना जुला अखां अमड़ी आस तैं सह

मरै, गुर कै शब्द फिर जीवै कोए, ममता की मल उतरै इहो मन हच्छा होए। वडांस महला तीजा, नदरी सतगुर सेवी है, नदरी सेवा होए, नदरी एहो मन वस आवै, नदरी मन निर्मल होए, मेरे मन चेत सच्चा सोए, एको चेतै ता सुख पावै, फिर दुख न मूले होए रहाओ। नदरी मर कै जीवी, नदरी शब्द वसै मन आए, नदरी हुक्म बुझी, हुक्मे रह सुमाए। जिन जेवा हर रस न चखियो, सा जेवा जल जाओ, अन रस सादे लग रही, दुख पाया दूजे पाए। सबना नदर एक है, आपे फर्क करे, नानक सतगुर मिले फल पाया, नाम वढाई दे। वढांस महला तीजा, माया मोह गुबार है, गुरबिन ज्ञान ना होई, शब्द लगे तन बुझया दूजे परजवे गोई। मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवै ता पावै मुख द्वार। रहाओ, गुणा का निदान एक है, आपे देता को पाए, बिना मैं सब विछड़ी गुर कै शब्द मिलाए। मेरी मेरी कर दे कट गए, इतना हथ के हो ना आया, सतगुर मिले सच मिले सच नाम समाया। आसा मनसा एहो शरीर है, अंतर जो जगाए, नानक मनमुख बंद है, गुरमुख मुक्त कराए। वढांस महला तीजा, सुहागणी सदा मुखी उजला, गुर कै सहज सुभाए।

गुर का शब्द कमाए। हुक्म मने ता हर मिले ता विचों हमें जाय रहाओ। हमें सब शरीर है, हमें उपत होए, हमें वड्डा गुबार है। हमें विच बुझ न सके कोए, हमें विच भगत ना हो वई। हुक्म ना बुझिया जाए, हमें विच जियो बंद है, नाम वसै मन आए। नानक सतगुर मिले हमें गई ता सच वसया मन आए। सच कमावे सच रहे, सच्चे सेव समाए। वडहंस महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेज एक एको प्रभ ठाकर गुरमुख हर रावे सुख सागर। मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम। हाँ वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ। मैं अवगण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया से मैं गुण नाही। हाँ क्यों मिला मेरी माया हाँ कर कर थाका उपाप बहुतेरे। नानक गरीब राखो हर मेरे। वढ़ंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी। हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी। हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयानी। जो पिर पावे सा सुहागण साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ। मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा तेरे अनेक प्यारे। हाँ पिर चित ना आवा जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण से मैं गुण नाही। हाँ क्या करी दुहागण नित सुहागण सदा।

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभु दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवां, तू वरदाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संतां धूरे। चरण कमल हृदय उरधारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावां, नानक नाम जपत सुख पावां। वढ़ंस महला पंजवां, साध संग हर

रतन जवाहर हर मन कलाला, सिमर सिमर प्रपय निहला। जात कत पेख साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभ तू।

पूरे। जे सौ खेल खिलाइए बालक रह ना सकै बिन खीरे। मेरा अंतर पुख ना उतरे अमाली जे सौ भोजन मैं नीरे। मेरा मंत्र प्रेम परम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई मैं मेलो मित्र सुखदाता। ओ जी की मेरी सब दिन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हाँ एक खेन तिस बिन रह ना सका ज्यो चात्रक जल कहो बिललाता। हाँ क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण कहो रख लेता। हाँ पही उड़ीनी कंत कहो अमाली सो पिर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे बिन पिर कितै ना लेखा। एहो कापड़ ताना सुखा वही कर ना सको हों वेसा। जिनी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेसा। मैं सब सिंगार बनाया अमाली बिन पिर काम न आए। जां सह बात न पुछिया अमाली तां बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली जिन सौ रिया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली तिनके तोमा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया प्रभ दूरे। जा मिलिया पूरा सतगुरु अमाली ता आसा मनसा सा पूरे। मैं सर्व सुखां सुख पाया अमाली फिर सर्व रहा पर पूरे। जन नानक हर रंग माणिया अमाली गुर सतगुर कह लग पैरे। वडहंस महला तीजा अष्टपदियां एको अंकार सतगुर प्रसाद। सच्ची बाणी सच तुहन सच शब्द विचारा अंधन सच सलाहना तन तन वड पग हमारा। मन मेरे सचे ना मिटो बल जाओ दासन दासा होए रहै ता पावे सच्चा नाम रहाओ। जेवा सच्ची सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए। सच खेती सच बीजना साचा वापारा आंदन लाहा सच नाम तन भगत भरे पंडारा। सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्से तिस मिले। मैली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जोनी मूल ना पाहे। गुरमुख दर साचा सचिया रहै साचे माए समाए। अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए। सच्चा थान सच सलाहना सतगुर बलिहार जाओ। सच वेला मूर्त सच जित सच्चे नाल प्यार। सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार। नानक सच्चा मिले ता मिले आपे ले मिलाए। ज्यो पावे त्यों रखसी आपे करे रजाए। वडहंस महला तीजा मनुआ दे दिस्ताम दा ओ कैसे हर गुण गावे। इंद्री व्याप रही अदकाई काम क्रोध नित संतावे। वाह वाह सहजे गुण रवीजे राम नाम इस युग में दुलभ है। गुरमत हर रस पीजे रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे। गुरमति आपे आप पछाणे ता निकर वासा पावे। ए मन मेरे सदा रंगराते सदा हर के गुण गाओ। हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ। हम नीच से उत्तम पए हर की सरनाई पाथर डुबदा काढ़ लिया साची वड़ियाई। बिकसे अमृत पए गुरमत बुद्ध पाई। अको परमल पए अंतर वासना वसाई। मानस जन्म दुलंब है जग में खटिया आए। पूरे भाग सतगुर मिले हर नाम ते आए। मनमुख पूले बिख लगे अहला जन्म गवाया। हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया। मुखो हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया। नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुक्त तिन पाया। वडहंस महल

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझे कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आख या आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना साबियो पाईया ने आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होवा तुर कदे सब पाईया ने आप आपे नजर करे वडहंस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना सब यो पाई है आप आपे सरबे समाना सरबे समाना आप तू है उपाय तंदे लाईया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाईया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाना गावन सुर नर सुगण सुजाना सुर नर सुगण सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेतै नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेतै मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जाम ना एक पछाणी भक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावे राज तेरा कबो ना जावे राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावे चाकर ता तेरा सोए होवे जोए सहे समावे दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावे जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करे स्वामी तेरे द्वारे जपै ता साचे

नदर करै ता सच पछाणा, साचो पछाणा ताम तेरा, जाम आप बुझावै दुख भूख संसार किए, सासा हो चुकावै। बिनवंत नानक जाए सहसा, बुझै गुर विचारा, वड्डा साहिब है आप अलख अपारा।

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सिवर लिया माने सदा रंग राती सहजे माती अंदर नाम वखाने कामन वड़ पागी अंतर लेव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कह पाए हर वार रावे सदा मुइये नहीं कर वासा पाए नहीं कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पर रली आला जोबन बाला अंधन कंध सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामनो हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब वा पार पला जे सहजे की जय राम अंधन नाम वखाणिए लाह हर रस पी जय राम लाह हर रस लीजे हर रावी जय अंधन नाम वखाण गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप पछाण गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चा शब्द रस पी जय नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरलै की जय गुरमुख खेती हर अंतर बीजी है हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम ते आए मन वसाए बूझै गुर बिचारा मनमुख खेती वणज कर थाके तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंतर सच्चा शब्द सुवाए हर वापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमती मन नि कर वसिया सच्चा शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साच रते विचारी ना बिना सब जग बौराना शब्दे हमें मारी सच्चे शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिलै पौ पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बुझियै हुक्मे मिल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवरण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम्या गोचर हुक्मे रहा समाई वढांस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो अपने घर तू सुख वसै पोहे ना सकै जमकाल जियो काल जाल जम जोहे ना सकै सचे शब्द लिवलाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए दूजे पाए परम विगुती मनमुख जोही जमकाल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरे आ अंतर तेरा निदान है बाहर वस्त ना पाल जो पावै सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सिखाई मनमुख अंदले ज्ञान में होने दूजे पाए खुवाई बिन नावै को छूटै नाही साबा दी जमकाल नानक अंतर तेरा निदान है तू बाहर वस्त ना पाल मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवन अपना अंतर शब्दया पारा अंतर शब्दया पारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया।

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती, बड़हंस महल्ला चौथा हर कृपा कर सतगुर मिल सुदाता राम। हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम, सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे नित करै बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुदाता। सुन गुरमुख नाम सब से हो मैं पापा राम, जप हर नाम लथे अड़े जगता पराम। हर हर नाम जिनी आराध्या तिनके दुख पाप निवारे, सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना जम कंकर मार बिदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी सुखदाते, दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सब से हम मैं पापा, जप हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम, गुरमुख जप सब रोग गवाया अरुत पय शरीरा। आंदन सह समाध हर लागी हर जपया गैर गंभीरा, जात्या जात नाम जिनत्याया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर नाम मेरे मन पाया, हर तारो कृपा।

तू दुख पंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो हर तारो कृपा, कर कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला।

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगा गुर खेवट शब्द दराए आन देनो हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी ते जिन दे हे राम पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जाने आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वढांस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलियो किया करतै हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुविन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुमामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक बखाणे नाम जाने हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हर दास कहत है वडपागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग वडहंस महला पंजवा शंत कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

गुण बेअंत किस कहन न जाई, कोय ना सकै पहुंचा। आप यो पाए आप प्रतपाले, जी जंत सब साजे। बिनवंत नानक सुखनाम भगती, दर वजह अनहद वाजे। राग वढ़ंस महला पहला, घर पंजवा अलाहणिया। एको अंकार सतगुर प्रसाद, तन सरंदा सच्चा पातशाह। जिन जगतंद लाया, मोहलत पुन्नी पाई भरी। जानी आड़ा कत चलाया, जानी कत चलाया। लिखिया आया रुन्ने वीर सबाए, काया हंस थिया वे छोड़ा। जांदन पुन्ने मेरी माए, जिहा लिखिया तिहा पाया। जिहा पुरब कमाया, तन सरंदा सच्चा पातशाह। हो जिन जगतंद लाया, साहिब सिमरो मेरे पाई हो। सबना हो पयाना, ऐथे तंदा कूड़ा चार दिहा। अगै सर पर जाना, अगै सर पर जाना। जो मेहमाना काहे गर्भ की जय। जित सेवे है दरगह सुख पाई है, नाम तसै का लीजै। आगै हुक्म न चलै मूले, सिर सिर क्या विहाना। साहिब सिमरो मेरे पाई हो, सब ना हो पयाना। जो तिस पावै समर्थ सोथी है, हीलड़ा हो संसारो। जल थल महियल रव रहया, साचड़ा सृजनहारो। साचा सृजनहारो, अलख्या पारो। ताका अंत ना पाया, आया तिनका सबल भया है। एक मन जिनी तिहाया, टाहे टाहे ओ सारे आपे। हुक्म सवारन हारो, जो तिस पावै समर्थ सोथी है, हीलड़ा हो संसारो। नानक रुना बाबा जानिया, जे रोवै लाए प्यारो। वाले वे कारण बाबा रोई है, रोवन सगल बेकारो। रोवन सगल बेकारो, गाफल संसारो। माया कारण रोवै, चंगा मंदा के सूझै नाही। ओ तने वै खोवै,

आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम लय हां रोवे बिरहा तन का अपना साहेब समाले हां साहेब समाल है पंथ निहाल है असा पे उठे जाना जिसका किया तिन्ही लिया हुआ तसे का पाना जो तिन कर पाया सो आगे आया असी के हुक्म करे हा आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम लय हां मरण न मंदा लोका आखिए जे मर जाना ऐसा कोए सेवो साहेब समर्थ अपना पंथ सुहेला आ गए होए पंथ सुहेले जावो ता फल पावो आ गए मिले वडाई भेटे स्यों जावो।

रोवै कंत समाल सदा गुण सार ना फिर मरै ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिन अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ आरे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप्यो पायो उन

ज्ञान में होनी मुठी, बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो, रोवै औगुणे आरी झूठी, पिर जग जीवन किसनो रोई है, रोवै कंत विसारे, सब जग आपो पायो न आमन जान संसारे, सो पिर सच्चा सद ही सच्चा है, ना यो मरे ना जाए, भूली फिरे तन एणिया, रंड बैठी दूजे पाए, रंड बैठी दूजे पाए, माया मोहे दुख पाए, आव कटे तन शीजे, जो किश आया सब किश जासी, दुख लागा पाए दूजे, जमकाल ना सूजे, माया जग लूजे, लब लोभ चित लाए, सो पर साचा सद ही साचा, ना एहो मरे ना जाए, एक रोवे पिरे विशुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा समाले, पिर अंतर समाले सदा है नाले, मनमुख जाता दूरे, एहो तन रुले रुलाया, काम ना आया, जिन खसम ना जाता हदूरे, नानक सातन मिले मिलाई, पिर अंतर सदा समाले, एक रोवे परे विशुनिया, अंधी ना जाने पिर है नाले, वडहंस महला तीजा, रोवे परे विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले, जिन्नी चलन सही जाने आ, सतगुर सेवै नाम समाले, सदा नाम समाले, सतगुर है नाले, सतगुर सेव सुख पाया, सबदे काल मार साची वरतार, फिर आवन जान ना होया, सच्चा साहेब सच्ची नाई, वेखे नजर निहाले, रोवे पिरो विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले, प्रभ मेरा साहेब शब्द ऊंचा है, के मिला प्रीतम प्यारे, सतगुर मिली ता सहज मिली, पिर राखिया उरतारे, सदा उरतारे नेहो नाल प्यारे, सतगुर ते पिर दिसै, माया मोह का कच्चा चोला, तित पैदै पग खिसै, पिर रंग नहीं पिर रंग राता, सो सच्चा चोला, तित पैदै तिखा निवारे, प्रभ मेरा साहेब शब्द ऊंचा है, क्यों मिला प्रीतम प्यारे, मैं प्रभ सच पछाणिया, होर भूली अवगणियारे, मैं सदा रावे पिर अपना, सचड़ै शब्द विचार।

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगणियारे सचड़ा आप जगत पाया गुरबिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यार।

निरपौ निरंकार पव खंडन सब सुख नव निर्देशी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सालाही क्या तिसका मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब के तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा तन दिया सुखदात है निखुट न कभी जाई अनंद भया सुख सह सुमाने सतगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराध अन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चूकी कान जमाणी जिन कहो किरपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू सर्ब जिया दयाला सब किश कीता तेरा वरत क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा जो पिता पूत किरपाला सोरठ महला पंजवां कर पहला चौथुके गुरु गोविंद सलाहिए पाई मन तन हिरदय तार साचा साहेब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए शार साध संगत कौ वारिया पाई जिन एक अंकार आधार सोई साचा राधना पाई जिसते सब किश होए गुरपूरै जान आया पाई तिस बिन अवर ना कोए रहाओ नाम होने पच मोए पाई गणत ना जाए गणी विण सच सोच ना पाईए पाई साचा अगम तनी आवन जान न चुकई पाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा पाई दे नावे एक कणी सिमरत शास्त्र सोधिया पाई विण सतगुर परम ना जाए अनक कर्म कर थाकिया पाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सोधिया पाई विण सतगुर नाही जाए वडभागी गुर पाया पाई हर हर नाम ते आए सच सदा है निर्मला पाई निर्मल साचे सोए नदर करे जिसे अपनी पाई तिस प्राप्त होए कोट मदे जन पाईए पाई विरला कोई कोए नानक रता सच नाम पाई सुन मन तन निर्मल होए सोरठ महला पंजवां दो तुके जाओ लाओ पाओ अपाओ एहो मान तौ लाओ मिलन दूराई आने अपना करत बिचारा तौ लो बीच बिखाई माधवे ऐसी देह बुझाई सेवो साध गहो ओट चरना न बिसर मुहत छसाई रहाओ अरे मन मुगद्या चेत चंचल चेत तुम ऐसी हृदय ना आई प्राण पत त्याग अंतु रचिया उर्ज्यों संग बैराई सोग ना व्यापै आप ना थापै साध संगत बुध पाई सागत का बकना इउ जानो जैसे पवन चुलाई कोट परादा शादे ओहे मानो कहना कछु ना जाई जन नानक दीन सरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई सोरठ महला पंजवां पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता माया सन बंदे ही अंत की बार को खरा ना होसी सब मिथ्या असने ही रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाए गो तुम बादरो एक पाजो राम स्नेही रहाओ तीन संगियां कर देही कीनी जल कूकर पस में ही होए अमरो ग्रे मैं बैठा करण कारण बिसरोही अनक पांत कर मणिये साजे काचे ताग परोही टूट जाए गो सूत पापरे फिर पाछा पछतोही जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस त्यावो दिन रहने ही जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुर ओट गहे ही सोरठ महला पंजवां गुर पूरा पेट्यो वट भागी मने भया परगासा कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहेब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाओ
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਨਿਰਪਉ ਪਏ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਪੀ ਹੋ ਬਨਹਾਰਾ ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੰਜੋਗੀ।

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हम मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरे बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरा सूजस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगे। जह कीर्तन तेरा साधु गावे तह मेरा मन लागे। सोरठ महला पंजवा। तन संतन का तन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व कुशल तब थिया। संतन बेनो अवर ना दाता बिया। जो जो शरण परे साधु की सो पार गरामी किया रहाओ। कोट प्राद मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संगवट भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी

जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बने आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवां कर दूजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई सुन मीता तूरी को बल जाई एह मन तेरा भाई रहाओ पाव मलोवा मल मल तोवा एह मन तैकू देसा सुन मीता हो तेरी सरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा मान ना की जय शरण परी जय करै सो पला मनाई सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पी जय इं दर्शन हर जियो पाई है भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर किरपा धारी सबा कुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रतपाल नित सार संभाल एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हरियारा।

हर जन को ही सुहावे, पेख निकट कर सेवा सतगुरु, हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ। अमलन स्यों अमली लपटायो, पूमन पूम प्यारी, खीर संग बार कह लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या मैं विद्यंसी रचिया, नैन देख सुख पावै, जैसे रसना साध लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावै। जैसी पूख तैसी का पूरक, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलिया अंतरजामी। सोरठ महला पंजवां, हम मैले तुम यूजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर दे सारहाओ। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेरवाना। तुम करो भला हम पलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम एह हवाला, राख संतन कै पाछे। सोरठ महला पंजवा कर दूजा, मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे, तह तुम रखन हारे, पावक सागर अथा

कीते कहो मेरा सम्मान करनहार तरन जाने, तू दाता मांगन कहो सगली दान देहे प्रभ पान। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगमे अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवां, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओढ़ सताणी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बने आई, पूर्व लिखिया पाई, एह मन तेरा पाई रहाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करै गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यो मन मानिया, रंग रते बिस्मादे। सोरठ महला पंजवां,

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा। कर पूजा होम एह मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत कौ पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई।

आए अपने सदगुर के मन पहाने, उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द भ्रम पागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जाका गुर चरणी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु ना पाई है, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची देह अज्ञानी, रहाओ मृग तृष्णा यार सुपन मनोरथ, ताकि कछ ना वडाई, राम भजन बिन कामना आवस, संग न काहूं जाई। हा हों करत बिहाय अवरदा, जी को कामना कीना, तावत तावत नह त्रिपतासिया, राम नाम नहीं चीना। साध बेकार बिखै रस मातो, असंख खते कर फेरे, नानक की प्रपाहे बिनंती, काटो अवगुण मेरे। सोरठ महला पंजवा, गुण गावो पूर्ण अबनासी, काम क्रोध बिख जारे, महा बिखमो यगन को सागर, साधु संग उदारे, पूरे गुर मेट्यो परमान देरा, भज प्रेम भगत प्रभ नेरा, रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया, मंतन रहे अगाई, जत कत पूर रहे हो परमेश्वर, कत आवे कत जाई। जप तप संजम ज्ञान तत बेता, जिस मन वसै गोपाला, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, ताकि पूर्ण काला। काल कलेस मिटे दुख सगले, काटी जमकी फासा, कहो नानक प्रभ कृपा धारी, मंतन भय बिगासा। सोरठ महला पंजवा, करण करावनो हार प्रभ दाता, पार ब्रह्म प्रभ स्वामी, सगले जी किए दयाला, सो प्रभ अंतर जामी। मेरा गुरु होवा आप सहाई, सुख सहज आनंद मंगल रस, अचरज भई बढ़ाई, रहाओ गुर की शरण पए पै नासे, साची दरगह माने, गुण गावत आराध नाम हर, आए अपने थाने। जय जयकार करे सब उस्तत, संगत साध प्यारी, सदबलिहार जाओ प्रभ अपने, जिन पूर्ण पै सवारी। गोसट ज्ञान नाम सुनि उदरे, जिन जिन दर्शन पाया, पयो कृपाल नानक प्रभ अपना, आनंद सेती कर आया। सोरठ महला पंजवा, प्रभ की शरण सगल पहलाथे, दुख बिन से सुख पाया। दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सदगुरु त्याया, प्रभ जियो तू मेरो साहेब दाता, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, गुण गावो रंग राता, रहाओ सतगुर नाम निदान दृढ़ाया, चिंता सगल बिनासी, कर कृपा अपनो कर लीना, मन वसिया अबनासी। ताको बिघन न को लागे, जो सतगुर अपने राखे, चरण कमल बसेर दे अंतर, अमृत हर रस चाखे। कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई।

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सदबलिहारे। सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगमे अपार बिलश बिनोद आनंद सुख माणो। खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमले आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगो बिक संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अबनासी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिकसानो नानक नाही सुमार। सोरठ महला पंजवा गुरपुरै अपनी कल तारी सब घट उपजी दया आपे मिल वडाई किन्नी कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म।

सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रपय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेसर उदरिया सब संसारो सोरठ महल।

गया हर गोविंद नमा नरोवा रहाओ ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाई हालत पलत प्रभ दोवै सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक तारिया सोरठ महला पंजवा जी जंतर सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेव की आपे रख पूर्ण पई बड़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपूरै पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ आन दिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता अपने दास का कंठ लाए राख जो बारक पित माता सोरठ महला पंजवा कर तीजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचों ने सहसा चुकाया सिकदारो ने पतियाया उमरावो आ गया चेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लभदे अपनी पाई ता कत आवै कत जाई तै साच न्याय नबेरा ऊहा समठा कर समचेरा अंतर जामी जानै बिन बोलते आप पिछानै सर्व थान को राजा तै अनहद सब दिया गाजा तिस पै क्या चितराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो घर बैठे गुरु ते आयो गुरपूरै सच कहया सो सुख साचा लया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर इशनाना रहाओ साची गुर वडियाई तां की कीमत कहण ना जाई सिर साहा पातशाह गुर भेट तमन यो महा सगल प्राहित लाथे मिल साध संगत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करै जयकारा नानक प्रभ मेरा साथे जन्म मरण पैलाथे सोरठ महला पंजवा गुरपूरै कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर इसनान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संत हो राम नाम निस्तरीय उठत बैठत हर हर त्याई आन दिन सुकृत करिए रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड पागी पाए कोट जन्म के किल बिखना से हर चरणी चितलाए उस्तत करहो सदा प्रभ अपने जन पूरी कल राखी जी जंत सा पय पवित्रा सदगुर की सच साखी बिघन बिनासन सब दुख नासन सदगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पय सब पावन जन नानक सुख कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लश्कर सब तेरा रखवाले गुरु गोपाला सब जी पहे दयाला जप अनद रहा।

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप तराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया। होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी, तांगत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना। नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओट सतानी, सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया। हर रसक रसक गुण गाया प्रभ काटिया जम का फासा, मन पूर्ण होई आसा जै पेखा तै सोई। हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे। निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे। गुरपूरा है राखी सरण सचे की ताकी, परमेसर आप हो रखवाला। सांत सहज सुखिन मैं उपजे मन हो।

जैसा बालको पाए सुभाई लख अपराध कुमावै कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावै हर अंतर जामी सब जाने ता किस पै आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावै पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा दुख कलेश सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा जा पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहूं आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, एहो पुन पदार्थ तेरा, जन नानक एक त्याया, सर्व फला पुन पाया। सोरठ महला पंजवा, कर तीजा दो पद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर इसनाना, गुरपुरै कीने दाना, सब कुशल खेम।

सोरठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगर्द हमारे राम नाम मन लागा जमल जाए कर पागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता। बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अबनासी ता की सेवना बिरथी जासी अनद करे तेरे दासा जप पूर्ण होई आसा। सोरठ महला पंजवा गुरे अपने बलिहारी जिन पूर्ण पै सवारी मन चंदिया फल पाया।

प्रभ अपने वर दीने सगल जीव असकीने जन नानक नाम ते आया ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। बेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम ते आई रहाओ। ज्यो मंगे सो लेवे प्रभ अपने संता देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साज सुपाखिया। सोरठ महला पंजवा सोई कराए जोत पावे मुहे सियाणप कछु ना आवै हम बारक तौ शरण आई प्रभ आपे पैज रखाई मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतपालन लागा करी तेरा कराया रहाओ। जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जेकरा वैसो करना नानक दास तेरी सरना। सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया। प्रभ चरणी मन लागा पूर्ण जाके भागा मिल साध संग हर त्याया। आठ पहरिया राध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ। परापुरबला अंकर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावै। नानक दास सच्चे गुण गावै सोरठ महला पंजवा। गुरमिल प्रभु चितारिया कार्ज सब सवारिया मंदा को नाया लाए सब जय जयकार सुनाए। संतो साची शरण स्वामी जी जंत सब हाथ सहकै सुप्रभ यंत्र जामी रहाओ। करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सतगुरबाना। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लहोड़ा गुरु उबारिया आनंद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक सच बखाना, सोरठ महला पंजवां, ऐथे उथे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाके, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सा सा संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरणाई, सोरठ महला पंजवां, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावै, बिरथी आस ना जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पा दाता, सोई संत गुण गावै, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावै, आठ पहरो हर का जस रमणा, बखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरा करतै, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपै आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवां, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगे को ना टिकै बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एहो पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आ मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरै पूरी कीनी, बगस अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरा आरा दे, कार्ज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मल कथ कहानी, सोरठ महला पंजवां, भूखे खावत ला, भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज को क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुख उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवां, सुख सांद घर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाणे, दास बाणी ब्रह्म वखाणे, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोरठ महला पंजवां, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ, हर नाम हृदय और तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपूरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया, सोरठ महला पंजवां,
ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ, ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਸ਼ਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਰਹਾਓ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰਾ, ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੈ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੇ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੇ, ਦਾਸ ਕਉ ਸਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ, ਸੁਖ ਸਾਂਝ ਫਿਰ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਏ, ਜਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੋ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਓ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ, ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰਿ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਸ ਚਾਖੈ।

जो जन भजन करे प्रभु तेरा तिसै अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पौ मिटिया, हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे, सतगुर दिया दिलासा। जिन घर आए सोभा सेती, पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जांकी, पूर्ण प्रभ के कामा। गुर चरनी लाग तरयो पव सागर, जप नानक हर हर नामा। सोरठ महला पंजवा, पयो किरपाल दीन दुख पंजन। आपे सब ठाती, खिन मैं राख लियो जन अपना। गुरपुर बेड़ी काटी, मेरे मन गुरु गोविंद सद त्याई है। सगल कलेस मिटे इस अंते, मन चिंदिया फल पाई है रहाओ। जेते जी जंत जाके सब कीने, प्रभु उच्चा अगम अपारा। साध संग नानक नाम ते आया, मुख उज्जल पए दरबारा। सोरठ महला पंजवा, सिमरो अपना साई। दिन सरैन सत्याई, हाथ दे जिन राखे। हर नाम महाराज चाखे, अपने गुरु उपर कुर्बान। भय किरपाल पूर्ण प्रभ दाते, जी होए मेहरबान। रहाओ नानक जन सरनाई, जिन पूर्ण पैज रखाई। सगले दुख मिटाई, सुख पुंचाओ मेरे पाई। सोरठ महला पंजवा, सुनो बिनंती ठाकुर मेरे। जी जंत तेरे तारे, राख पैज

सुनी पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पारे उतारे।

आओ बैठ आदर सब थाई ऊ न कतहूं बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ अर गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यों पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जाते अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन को ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहे उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जय सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उर तारो रहाओ अटल भयो त्रू जा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरै पारा

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रह तसदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस नाहे। निस्बासर बिख्यन कौ तावत कह बिद रोकौता है रहाओ। वेद पुराण सिमृत के मत सुनो निमख नाहिए बसावै। पर तन पर दारा सिंह रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म न जाना। जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अज हूं समझ कश बिगड़ो नाहन पज ले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागेओ दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे। जब ही निरतन देखियो नरकओ संग छाड़ सब भागे।

लोभ मोह अवमानना, हर सोग ते रह न्यारो, नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्याग, जगते रह निरासा, काम क्रोध जे परस नाहनो, ते कट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नर कौ कीनी, तेह ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। सोरठ महला नावा, प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ, को काहू को नाही रहाओ। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिस कहरै, विपत परी सभी संग छाड़त, को न आवत नेरै।

मेरे प्रभ सालाहन से पले प्यारे शब्द रते रंग होए तिसकी संगत जे मिले प्यारे रस लै तत्व लोए पत प्रवाना साच का प्यारे नाम सच्चा निशान आया लिख लै जावना प्यारे हुक्मी हुक्म पछाण गुरबिन हुक्म ना बूझिया प्यारे साचे साचा तान हुक्मे अंदर निम्या प्यारे हुक्मे उधर मजार हुक्मे अंदर जम्या प्यारे ऊंदो सिर कै पार गुरमुख दर गै जानिए प्यारे चले कारज सार हुक्मे अंदर आया प्यारे हुक्मे जद हो जाए हुक्मे बन चलाइए प्यारे मनमुख लह सजाए हुक्मे शब्द पछाणिए प्यारे दरगह पैंदा जाए हुक्मे गणत गणाइए प्यारे हुक्मे होमे दोए हुक्मे पवै पवाइए प्यारे अवगण मुठी रोए हुक्म सियापै सहाका प्यारे सच मिलै वड्याई होए आखण औखा आखिए प्यारे क्यों सुनिए सच नाउ जिन्नी सो सालाहया प्यारे हौतन बलिहारे जाओ नाव मिलै संतोखियां प्यारे नदरी मेल मिलाओ काया कागद जेठिए प्यारे मन मसवाणी तार ललता लेखन सच की प्यारे हर गुण लिखो विचार तन लेखारी ना

बिख माया चित मोहया पाई चतराई पत खोए चित में ठाकर सच वसै पाई जे गुर ज्ञान समोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर स्यों बैरागिए पाई दर कर साचया पूल पाता लिया कास तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिलिया सुख पाया पाई जूका मनो गुमान जल मल काया मांजिए पाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए पाई मन तन निर्मल होए।